0: Du lytter til Radio Abkirves på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Musicgi, Sochgi aur Aapki. Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए
1: मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: والطور وكتاب مسطور।
3: कोह तूर की कसम और किताब की जो लिखी हुई है।
2: في رق منشور।
3: कुशादा औरात में।
2: والبيت المعمور।
3: और आबाद घर की।
2: والسقف المرفوع।
3: और ऊंची छत की।
2: والبحر المسجور।
3: और उबलते हुए दरिया की।
2: إن عذاب ربك لواقع।
3: कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक होकर रहेगा।
2: ما له من دافع।
3: और उसको कोई रोक नहीं सकेगा।
2: يوم تمور السماء مورا।
3: जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपाकर।
2: وتسير الجبال سيرا।
3: और पहाड़ उड़ने लगे ऊन होकर।
2: فويل يومئذ للمكذبين।
3: उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है।
2: الذين هم في خوض يلعبون।
3: जो खौज बातिल में पड़े खेल रहे हैं।
2: يوم يدعون الى نار جهنم دعا।
3: जिस दिन उनको आतिश जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे।
2: هذه النار التي كنتم بها تكذبون।
3: यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे।
2: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون।
3: तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता।
2: इस्लाम

0: बजट नहीं पड़ा, मगर उनने भी बड़ी बहस की है कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, और इंशाल्लाह ताला इन चीजों पर
1: इतना
0: काम किया
1: बड़ा
0: जाए।
1: बजट है कि अपनी वो फिक्र ही नहीं पड़ी जाती।
0: नहीं, वो ये ना सर,
1: चलें अदनान, आप चूंकि इसलिए आपसे मल्टी किस्म के सवाल करते हैं क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते आते रहते हैं, बातें भी करते हैं, खुद उसमें शामिल भी होते हैं। अदनान, काफ़ी टाइम हो गया, कम्यून के इलेक्शन हो गए हैं लेकिन अभी तक हम जो है वो इधर से उधर बाल, उधर से उधर बाल, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरह की बातें चल रही हैं, कोई ठोस चीज़ बाहर नहीं आ रही, कोई ठोक पॉलिसियाँ बाहर नहीं आ रही कि ताकि ये काम करें तो अगली दफा इन्होंने वोट नहीं लेने दोबारा।
0: सब वोट सबने लेने होते हैं, मगर मसला ये होता है कि जो पहला साल होता है ना वो बड़ा टफ होता है, क्योंकि काफी चीजें जो होती हैं वो सीखनी होती हैं, टेक ओवर करनी होती है। आप इंशाल्लाह ताला ये जब बजट बन जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ तब्दीली आएगी और कुछ चीजों में भी आएगी। रीजन का मैं ये कह सकता हूँ कि रीजन का जो मसला रहा है वो ये रहा है कि पूरा जो शेलन है ना उसको एक रीजन में बनाना था, तो वो भी क्या कहते हैं टाइम टेम टिल था, और कुछ रीजन के जो काम थे वो कमूनों में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट कपल ऑफ वीकेंड्स बजट के बाद आपको नजर भी आना लगेगा कि कुछ तब्दील चीजें तब्दील हो रही हैं और कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला काफी चीजों की सूरत नजर निकल आएगी कमिंग वीक और कमिंग मंथ्स में, और
1: अदनान
0: नेशनल
1: आपका
0: पैन पे
1: बहुत
0: भी
1: शुक्रिया।
0: ऐसे ही।
1: अदनान देखिए ना, आज इस वक्त जो है 9:23 हुआ चाहते हैं, जो लोग इस वक्त लाइव सुन रहे हैं उन्हें तो सारी चीज़ का पता है, गाड़ियों में या किसी और जगह पे, घरों पे या मुख्तलिफ मकाम पर या किसी भी हिस्से, शहर के हिस्से में सुन रहे हैं, उन्हें तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो लोग आगे सीना गजर कुछ सुनाएगा किसी को, तो वो सारी आपकी बातों को, जो असल मकसद है, वो तब्दील कर देते हैं।
0: बस सब मेरा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, और मेरा काम है कि लोगों के लिए बेहतरी करना, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया और यही मैं अपने नेक्स्ट कदम पर लेके चलूंगा, और अल्लाह की बस मेरी दुआ ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी इस नेक काम में ही रहें और आगे उनको अल्लाह ताला अपनी जिंदगी में कामयाबी दे। तो मेरे लिए तो यही है कि मैं जितना हो सकता मैं करता हूँ, अभी आपकी अभी थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा जो है उसको दूसरे कमरे में मैच देख रहा है, उसको थोड़ी बातें करूंगा, फिर उसको वो सो जाएगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत अपना क्या कहता है एक आधा घंटा ऐसे पढ़ता हूँ, कुछ चीजें देखता हूँ कि कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं ना जो मुझे नेक्स्ट डे तो इस तरह बंदे का होता है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि मेरा आधा है नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने का, तो वो तो इंसान प्रिपरेशन रखेगा तो वो लड़ सकते हैं ना फिर, वरना तो बंदा
1: नहीं,
0: पीछे हो
1: एक
0: जाता है।
1: दिन में जो 3 महीने के अंदर आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्हें पता ही नहीं होता हम किस मकसद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो अभी से इरादा करें, उन्होंने 3-4 साल मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है, बताना, लोगों को समझ आएगी कि ये लड़ना लड़का लड़की जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये किनकी तबीयत कैसी है, ये क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे
0: इरादा
1: बेहतरीन तरीका आपने अपनाया, पहले भी आप एक्टिव थे, अभी आपने शुरू से ऐलान कर दिया है।
0: साहब अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी अल्लाह ताला की जो नसीब में होगा वो ही होना है, जो इंसान के नसीब में लिखा होगा वो ही होना है, नसीब और रिस्क जो है वो उसके हाथ में है और ये बंदा नहीं कुछ कर सकता इसके अंदर।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया। अदनान मैं समझता हूँ जितनी मुझे समझ है, जितना तजुर्बा है, जितना हम लोगों से पूछते हैं, आते हैं, बात करते हैं, अदनान देखें कितना प्यारा मुल्क है कि आपको हर चीज़ जमहूरी तरीके से मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर अच्छी चीज़ हमें मिलती है। कहीं वो होता छोटा मोटा, ज़ाहिर है कितने बड़े लोगों में कुछ ना कुछ तो हो जाता है, घर में जो घर में अफराद रहते हैं उनमें भी तो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। एक मुल्क चलाना, एक मुल्क में रहना, अस्पतालों की सहूलियात, बाकी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, बसें, ट्रेनें, क्या क्या मेरा टिकट ज़्यादा है या आपका थोड़ा है, सबके टिकट बराबर हैं, सहूलियात जो है वो डिफरेंट होती हैं।
0: नहीं दादा साहब यही है, और अल्लाह ताला के कहते हैं सब कुछ है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि
1: बस
0: हमें
1: अदनान
0: इसमें
1: आप
0: लग
1: लेकर चलें,
0: जी।
1: लोगों को साथ लेकर चलें, लोगों को बताएं, हकायक बताएं कि हमारा आने वाला जो वक्त है, वो तो वक्त तो अगले पता होता है और होता है, लेकिन अक्ल भी तो इंसान को, तालीम क्यों हासिल करता है बंदा, वो कहे जी खुद ही आ जाएगा,
0: यही
1: मैं खुद
0: दादा
1: ही कॉलेज में
0: साहब
1: चला जाऊंगा, मैं खुद ही डॉक्टर
0: यही
1: बन
0: दादा
1: जाऊंगा, मेरी
0: साहब
1: किस्मत में
0: मैं
1: लिखा हुआ है। तो ये
0: यही
1: चीज़ें
0: मैं
1: तो अपनी
0: कहता हूँ,
1: जगह दुरुस्त है, किस्मत होती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें खुद भी करनी पड़ती हैं, तब बंदा डॉक्टर बनता है, तब सियासतदान बनता है, जब वोटें पड़ती हैं, जीतता, इलेक्शन जीतता, तब बनता है।
0: बस मैं आपको भी बात बताऊं, इंसान को ना हाफ अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए, और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं थोड़ी देर पहले आया तो मेरी

0: बहुत वॉच ऑफ करना पड़ेगा कि वो अंदर आती है कि वो नहीं आती, क्योंकि स्वीडन के अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है ना, वो ये आ रही है कि जो स्वेच डेमोक्रेट है ना, जो बहुत हाई एक्सट्रीमिस्ट है, वो सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन रही है इस वक्त। जो सिटिंग गवर्नमेंट की पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है ना, वो तीसरे नंबर पे इस वक्त आ रहे हैं। तो सब बड़ी क्या कहते हैं, तब्दीली आ सकती है। ये एक टर्निंग इलेक्शन है जिसके अंदर काफी चीजों का अनएक्सपेक्टेबल चीज है। ये करीबन रात को, जैसे लोगों ने कहा है कि जब वोट बंद हो गए ना, उसके बाद स्वीडन के अंदर एक सिस्टम है कि उसके अंदर वो थोड़ा बहुत पिगाइनिंग करते हैं, वो 9-10 बजे आती है, तो फिर उस वक्त जाके पता चलता है स्वीडन के अंदर के इलेक्शन का किस तरह से माहौल जा रहा है। तो साहब उस वक्त अंदाजा होगा कि स्वीडन की गवर्नमेंट और लोकल इलेक्शन और ये कहां तक किस तरफ जा रहे हैं।
1: नईम साहब, आपका सियासी तजिया क्या कहता है?
2: देखिए जी, जो तो रिक्स डा की बात है ना, तो उसमें सोशल ही इस टाइम ऊपर जा रही है, लेकिन ये प्लस माइनस करें तो ये जिस तरह पिछली हुकूमत बनी थी एक दो सीटों से, इस बार भी उसी तरह ही बनेगी। अगर के सोशल के पलड़े में एक दो सीटें ज्यादा आ गई तो इनशाला सोशल जो है ना वो हुकूमत बनाएगी। मुदरातर जो जमात है ना, जो हुक्मरान जमात है ना, वो भी सोशल के साथ मिल सकती है और उन्होंने थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल भी दिया है, लेकिन स्वेरिया डेमोक्रेट को हमेशा के लिए बाहर रखना बड़ा जरूरी है। अगर वो आ जाते हैं तो ये फॉरनर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये इस बार सोशल डेमोक्रेट जरूर आएगी, और क्योंकि काफी पार्टियों का झुकाव उनकी तरफ है, फॉरनर का झुकाव उनकी तरफ है। देखिए, 2 दिन पहले ही माइग्रेशन में एक मेरे पास केस आया जिसमें अभी 2 साल की बच्ची, 24 महीने की बच्ची को उत वीसा कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा नफरत का इजहार है कि माइग्रेशन को ये नहीं पता लगता कि माँ के पास भी वीजा है, बाप के पास भी वीजा है, 24 माह की बच्ची उसको यहाँ से उत वीसा, 4 हफ्ते का टाइम दिया कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, तो वो कैसे यहाँ से मुल्क छोड़ के जाएगी। बल्कि ये एक नफरत का इजहार है। ये जो स्वेरिया डेमोक्रेटिव है, जो उन्होंने हमारे लिए जो फसल बीजी है, वो इंतहाई खतरनाक है, और उसके लिए जरूरी है कि ये पॉजिटिव हुकूमत आए और जो है ना फॉरनर के लिए एक पॉजिटिव सा कानून बनाए। देखिए, जो जितने भी क्रिमिनल लोग हैं ना, वो कोई पाकिस्तानी या भाई कोई भी फॉरनर ये नहीं चाहता कि उसको आप मुल्क के अंदर रखें। क्राइम के हम भी खिलाफ हैं, वो भी खिलाफ हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, इसको वीजा ना परमानेंट दे, कोई स्पीड लिमिट पे आके कोई 50 की जगह 60 पे गाड़ी चली गई है तो उसको मुल्क से उत्वीसा कर दे, या उसको परमानेंट ना दे, या किसी का परमानेंट ही छीन ले। ये मतलब बहुत सारी ज्यादतियां जो है ना स्वेरिया डेमोक्रेटिव ने की हुई है। तो ये इंशाल्लाह ताला जो है ना वो पॉजिटिव होगा, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि इस बार तकरीबन 40% वोट जो है ना यंग जनरेशन के आए हैं, जो कि पिछले 2022 में नहीं आए थे, तो इसका मतलब उससे काफी फर्क पड़ेगा। और तीसरी बात, ये जो काउंसलर के हमारे कम्यून के इलेक्शन है, जो हमारे 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मतलब वो देखे, हमारी तादाद बहुत कम है स्वीडन के अंदर, तो उनका अगर वो कम्यून में दोनों नहीं भी बैठेंगे ना, चांस बहुत कम है कि वो कम्यून में बैठ जाए, लेकिन अगर उसमें नहीं बैठेंगे तो किसी ना किसी स्टीरिसन में जरूर बैठेंगे, ये 100% है। और जो पाकिस्तानियों की प्रेजेंटेशन है वो इंशाल्लाह ताला जरूर हो जाएगी।
1: शायद आप सुन रहे हैं, आप भी एनालाइज करते रहते हैं, तो यहाँ जिस तरह, चूंकि आप डेनमार्क में पैदा हुए, तो डेनिश पीपल्स पार्टी यहाँ भी तगड़ी है, वहाँ भी तगड़ी लग रही है, तो आप किस तरह देख रहे हैं?
3: सीधी सी बात है, ये जैसे कंपेन, मैं थोड़ा थोड़ी हटके बात करूंगा। दोस्तों ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, और वो वाकई जिस तरह वो कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। तो इधर मैं थोड़ा स्वेरियो डेमोक्रेट, यानी के वो स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी का नाम है, जिमी ऑकर्सन उसका, उनकी यही पॉलिसी है कि वो अपनी सियासत जो है फॉरनर्स के ऊपर और खासकर मुसलमानों के ऊपर उनको वो टारगेट करें। और इसी इलेक्शन कैंपेन में पिछले 1.5-2 माह से उन्होंने राज्य के जो है ना वो टारगेट किया है मुसलमानों को, और जो फॉरनर्स को तो किया ही किया है, लेकिन इस बार उन्होंने वो कहते हैं मुसलमानों के ऊपर एक बड़ा सख्त रवैया और सख्त हाथ रखा है, जिसके ऊपर मैं हैरानकुन तौर पर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यहाँ का जो मीडिया है वो ये चीजें देखने के बावजूद उनको ये नहीं कह सका कि यहाँ पर आप कंपेन करें लेकिन किसी के जो है वो मजरू ना करें, किसी के एहसासात, किसी के जज्बात, क्योंकि यहाँ पर हाली जो मुसलमान और दूसरी दूसरी जो तबके के लोग हैं जिनका दूसरे रिलीजन से तल्लुक है

0: भी रहते हैं, तो आप सिर्फ मुसलमानों को क्यों कर रहे हैं? फिर आपने अगर अपनी सियासत में रिलीजन के कोई यो यो कितने फितना आपने अगर रखना है, तो फिर आप सारे रिलीजन को, क्योंकि वोटर तो फिर आपके सारे हैं, फिर आप, मेरा ये मानना है, फिर आप सबको करें टारगेट, सारे रिलीजन को। सियासत का ये मतलब है कि आपने दूसरे क्या कहते हैं मजहब को करना टारगेट। इस चीज की इनको शर्म आनी चाहिए कि जब आप सियासत करते हैं तो अपनी जो आपकी सियासी जो अहलियत है उसको उजागर करें। अगर आप इतने जोगे नहीं हैं तो फिर आप इस तरह की जो बेशर्मी है ये जो लोग करते हैं, खासकर ये जो पार्टी है, इनको ये शर्म आनी चाहिए कि आपके मंशूर में, आपके जो आयन है जो आपके मुल्क का, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी तबके के जो जिसको वो मानते हैं, जो उनका मजहब है उसको आप करें। इस तरह तो इधर कई मजहब हैं जिस यहाँ पर स्वीडन में, तो फिर आपके ये दोहरे मयार हैं, फिर आप उन सबको करें ना, फिर आपको आपको इतनी है कि क्या दुनिया में हो रहा है, आपको ये भी पता है दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप दुनिया का देखना चाहते हैं, आप किससे किसके बेनिफिशरी हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। कहाँ से आपको पैसा आता है ये भी सबको पता है, कौन आपके पीछे है ये भी सबको पता है। यहाँ पर जो यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं उन सबको पता है इस बात का, और मेरा यही मानना है कि इस बार रिजल्ट इंशाल्लाह ताला पहले से आएगा मुख्तलिफ। जिन लोगों ने नेगेटिविटी करनी है, जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलानी है इधर स्वीडन में, जो ये लोग हैं उन्होंने तो उसके पीछे रहना है, वो तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते उनकी क्या कहते हैं उनके आप जो इंसान की फितरत है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं हो सकती, उन्होंने तो उधर ही जाना है। तो मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह ताला बस यही आप उस पॉजिटिविटी के ऊपर होना चाहिए कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो है एक अच्छी कोई पार्टी आएगी, एक पार्टी जो वो जीतेगी तो उसके ज्यादा वोटों के साथ, तो फिर वो किसी दूसरे जो उनका ब्लॉक है उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी, जिनको ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि पहले होता है। तो तीसरी बात मैं आखिरी करूंगा, इधर हमें वो स्वीडन में कुछ काफी साल हो गए हैं, इधर ये पता नहीं एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है कि कोई वाजिया बर्तरी से, या कोई अगर पार्टी जीतती है या उसको वाजिया बर्तरी बर्तरी ली देनी नहीं दी जाती, उसको 10-15 बल्कि दूसरी जो अपोजिशन है उसके साथ भी मिलकर गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, या उस उसके वो इतने हो जाते हैं बलागर। ये पिछले काफी सालों से, ये कोई एक नहीं काफी 20-25 सालों से ये हो रहा है इधर, और ये पता मेरा मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मेरा मुझे नहीं लगता ये एक प्लानिंग के तहत किया जाता है कि ये इनका जो मीडिया है वो बड़ा स्ट्रांग है, वो प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें करवाता है, और उसके बाद फिर जाके रिजल्ट जो है वो जो आना होता है वो अचानक ही वो नहीं आता, बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये क्या हुआ है। इन जैसे मुल्कों में ये हो रहा है तो फिर तीसरी दुनिया के मुल्कों का क्या क्या हालात होंगे।
1: चौधरी शौकत साहब, आपने बातें सुनी, शायद की नईम साहब की भी सुनी, तो आप चूंकि बिजनेस से मुंसलिक हैं शायद की तरह, तो मुख्तलिफ लोगों से आप मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, आपका तजिया क्या कहता है?
2: जी बिल्कुल, माशाल्लाह साहब दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें कही और जिससे आपको सबक भी मिलता है और इंफॉर्मेशन भी मिलती है। बात यह है कि देखें, यूरोप में इस तरह से जो कि एंटी फॉरनर हैं वो काफी बातें होती हैं, पार्टियों में भी बातें होती हैं और बड़ी जोर से बातें होती है, और इसका एक ही हल होता है, देखें इनको जब भी इलेक्शन होते हैं तो बर्तरी मिल जाती है जो कि एंटी फॉरनर होते हैं। क्यों? कि ये लोग जो है ना इस तरह से कंपेन करते हैं और जाके फिर ये लोग वोट डालते हैं, क्योंकि जो यहाँ के डेनिश हो गए या स्वीडिश हो गए वो जाके वोट डालते हैं, जाहिर है वोट डालते हैं तो उनको बर्तरी हासिल होती है। तो इसी तरह से हमें भी उन अपने जितने भी फॉरनर हैं उनको चाहिए कि अपना वोट डालें जाके, क्योंकि हम भी काफी तादाद में अब हो गए, हमारे बुजुर्ग आए, बुजुर्गों से हम आए, उनसे बाद हमारे बच्चे हैं, चूंकि बच्चे हो गए हैं, तो हमें ये हमारी भी काफी तादाद होती है हर जगह पे, हमें भी चाहिए कि अपने जो है ना पूरी तक से अपने वोट डालें जाके, पूरी फैमिली है, सभी जो है जिनको वोटिंग का हक है वो अपना वोट डालें, वोट का हक इस्तेमाल करें ताकि हमारी भी मेजॉरिटी हो, के जो के साफ कॉर्नर रखते हैं फारनों के बारे में पार्टी, उनको स्पेस मिले, उनको जगह मिले, उनको बर्तरी मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, ताकि वो फिर जो कि दूसरे एंटी फॉरनर है उनकी ज्यादा पावर ना हो। तो हमें ये सबको चाहिए कि ये हमें जितना भी जब भी कोई इलेक्शन हो तो हमें सबको मिलके ये जोर लगाना चाहिए कि अपने वोट डालने चाहिए, अपने दोस्तों को वोट डलवाने चाहिए, और बाकी जितने भी है ये सबको चाहिए कि अपना हक मांगे। हक मांगे उसी तरह से मांग सकते हैं कि जब अपना वोट डालेंगे आपको हक मिलेगा और आप अपना हक इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये है कि हम दुआ करते हैं कि अब एंटी फॉरनर ना आए, जो को पार्टी है अब जो इलेक्शन स्वीडन में होने जा रहा है तो वही जो को पाकिस्तान फॉरनों के हक में है कोई पार्टी है वही उनको ही बर्तरी हासिल हो, इंशाल्लाह होगी भी। तो ये ताकि ये हमारे एंटी जो कानून बनाते हैं उनमें जरा नरमी
1: आए, नजमी आ जाएगी। आपका मौकफ आ गया जी साहब, आप बुजुर्ग आदमी है, आप आते जाते रहते हैं, आपके बच्चे भी मालूमों में रहते हैं और आपको भी फीडबैक मिलता रहता है, क्योंकि फिर आप खुद मीडिया के एनालाइज भी करते रहते हैं। तो कल मेरी भी पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात हुई और मुझे सुनने का मौका मिला, वो अच्छी खासी जो है सियासी शऊर रखते हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर्स हैं, बिजनेस भी करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में वो अपना हिस्सा डालते रहते हैं। साहब आप क्या कहेंगे?
3: शुक्रिया जनाब राजा साहब। मालमों में मुकीम शाहिद साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी साफ गोई के साथ, और मैं समझता हूं कि उनकी मीडिया के ऊपर बहुत भारी और गहरी नजर है, उन्होंने जो अपनी बातें की है ना, उन्होंने तमाम तकरीबन जो हम इस वक्त आपके रेडियो आपकी आवाज से अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, दो तीन बातों की उन्होंने निशानदेही की है, और ऐसे ही नहीं की, उन्होंने गहरा मुतालिया करके मीडिया का देख कर रवैया एंटी फॉरनर के मुतालिक कि उन्हीं पार्टियों को लाया जाता है, बल्कि यहां तक भी उन्होंने कहा कि भी पैसे भी कहां से आते हैं, पैसे भी कहां से आते हैं। मैं यहां बात इतनी ही करूंगा जितनी शाहिद साहब ने फरमाई है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर कोई फॉरनर किसी किस्म की क्रिमिनलिटी करता है या जराइम में मुलव्वस है, बिल्कुल उसको पकड़ना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। इसके अंदर हम सब जितने भाई इस वक्त बातें कर रहे हैं हम मुत्तफिक हैं शाहिद की बात से, लेकिन स्पेशली तौर पर मुसलमानों को फिर तीसरी दफा कहता हूं कि मुसलमानों को, क्या दूसरी कम्युनिटी जो है जो मुस्लिम नहीं है उनको वो नजर नहीं आती? ये शाहिद ने तस्वीर बनाकर हमारे सामने पेंटिंग बनाकर पेश की है, इसको गौर से देखना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान में ऐसी सियासत चलती थी, हम कहते थे, एतराज उठाते थे, अगर यहां भी वही रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि अपनों को नवाजना, अपने चहेतों को मेहरबानी से पेश आना और दूसरों को इंसान ही ना समझना, ये डेमोक्रेसी नहीं है। और इन्हीं बातों की जो करीम है ना, शौकत साहब वीवा वाले साबिक रेस्टोरेंट के मालिक, इन्होंने इन बातों को बड़ी अच्छी तरह इसी तरह एक्सप्लेन किया है कि एंटी फॉरनर सबको नहीं एक ही तराजू में रखा जाता, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को रखकर एंटी मुसलमान जो हैं उनसे शुरू किया जाता है। यहां मैंने ये सवाल उठाया था बुखारी साहब के सामने, पहले तो उन्होंने कहा जी कि वो नए काउंसलर जो कोपेनहेगन में बने, हम दोनों मुल्कों की बात कर रहे हैं, और काउंसलर इंतखाबात पार्लियामेंट हो या बल्दियाती हो, इलेक्शन की बात ही हो रही है दोनों मुल्कों की। और यहाँ हमारे बच्चों के पास भी दो दो पासपोर्ट है, स्वीडन में भी दो दो पासपोर्ट है, मेरी फैमिली है वहां पर। तो बात यह है कि अगर इतने सारे हकूक नेशनलिटी के मिलने के बावजूद ये तफरीक क्यों आई है, अब ये जो है तफरीक क्यों आई है, इस लफ्ज पर हम सब ने आपस में गौर करना है। तो बुखारी साहब कहते हैं जो काउंसलर यहाँ बने हैं पाकिस्तानी, तो वो जब इजलासों में जाते हैं, कमेटियों में बैठते हैं, सियासी पार्टियां डिबेट करती हैं, मुबाहसा करती हैं, तो क्या वो उन्हें बताते हैं कि आपके आईन में ये नहीं लिखा हुआ जो आप तरमीम कर रहे हैं, क्या उनकी बात सुनी जाती है? या बुखारी साहब वहां जाकर उनको कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये जाएं उनके साथ पार्लियामेंट में जाएं, ये जाएं, इनको बहुत आईन आता है, माशाल्लाह मैं तारीफ करता हूँ, बुरी बात नहीं। आयन के ये मास्टर है, माइन है, इन्हें पता है अलब बे पे का पता है। अब मैं आखिरी बात करके अपने दोस्तों को माइक देता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेता। इन्होंने वो हारी साहब ने कहा गाली देने पर भी सजा है, सिकंदर मलक साबक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूदा काउंसलर बल्दियाती कोपनहेगन स्टेट, उसके फैमिली को उसको कत्ल की धमकी दी गई है, क्या ऐसी सजा मिलेगी कि दूसरा आदमी, हम जो पांच आदमी बैठे हैं हमें भी कोई धमकी ऐसी ना दे कि जिसको नमूना बनाकर मीडिया पेश करे।
1: जी शाह साहब आपकी तरफ जिक्र किया गया, फिर मैं अदनान की तरफ आता हूँ, नईम साहब के पास चलता हूँ। जी शाह साहब
4: जी बिल्कुल, शायद ने बात की और हाजी असलम साहब ने भी, इन्होंने सेकंड टाइम ये क्वेश्चन रेज किया है। हाजी साहब मैंने इसके ऊपर इसलिए बात नहीं की क्योंकि ये अब केस जो है ये अदालत में चला गया और अदालत इसका फैसला करेगी। वो बंदा जो है उसको पुलिस ने बकायदा अदालत में केस बनाकर भेज दिया और वो पकड़ा गया हुआ है और उसके ऊपर जो केस बन गया, इससे ये क्योंकि अब अदालत में केस है तो इसके ऊपर
1: डिबेट
4: नहीं कर सकते। और जो जो चीज हाजी जो इदनान ने बात अपना शायद ने बात की है ये बहुत अच्छी बात है। ये हम अरसा दराज से इस रेडियो पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एजेंसियां जो हैं वो जो है डेमोक्रेसी चलाती हैं। यहाँ पे देखे सबसे पहले हाजी साहब आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप ये हिसाब लगाएं कि जब 70s में हम आए थे हमारे पास कुछ नहीं था, इन्होंने हमें माँ के घर में जैसे बच्चा जाता है भूखा होता है प्यासा होता है तो माँ उसको सब कुछ देती है, तो डेंशो ने हमें हाथ खोल कर यहाँ पे हर जगह रखी, हमने मेहनत की, काम की, अपने नाम बनाए। अब जब यहाँ पे बहुत ज्यादा 90s में फ्लुतनिंग आनी शुरू हुई तो मैंने उस वक्त आवाज उठाई थी अपने प्लेटफॉर्मों पे, पाकिस्तानी पे भी और दूसरों पे भी, कि खुदा रहा ये जो फ्लुतनिंग और इन वन द लॉ है इसको ये इकट्ठा कर रहे हैं तो इसको इकट्ठा ना होने दे, फ्लुतनिंग कानून रहना चाहिए और इन वादा का कानून जो है इसको लादा रहना चाहिए क्योंकि ये आयन के खिलाफ है। तो इन्होंने कहा कि ये बंदा क्या बातें कर रहा है, इसको तो पता ही नहीं, ये तो ऐसे बोतरी मार रहा है, तो मैं खामोश हो गया। आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। मैं सबसे पहले इसी रेडियो पे खुद अपने आप को कहता हूँ कि सबसे बड़ा राशिस्ट मैं हूँ। जब मैं अपनी बिरादरी को, अपने ये जो पांच सात साथ बैठे हूँ, मैं इनको अपने बराबर के हकूक नहीं देता तो मैं गोरों को कैसे कहूंगा। मैं आज भी आपको ये बता दूं कि डेनमार्क के अंदर, स्वीडन के अंदर जो सही मुसलमान है, जो काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल उनकी तरह है, वो 99% ज्यादा महफूज है बनस्बत उनके के जो खुद पंगा लेके तो अपने हालात को खुद खराब करते हैं। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज का जो इलेक्शन होने जा रहा है इस पे हमारे लोगों को एहसास करना चाहिए कि आखिरी वोट भी इतना कीमती है कि अगर वो नहीं डालेगा, देखे ये जो काउंसलर नौजवान लड़के खड़े हुए हैं ये किसी के मोहताज नहीं, ये सिर्फ आपको ये दावत दे रहे हैं कि आपका नाम आ जाए लिस्ट के ऊपर कि आप इस मुल्क के अंदर जहां रहते हैं किसी भी इलाके में रह रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के अंदर आपका नाम आ जाएगा कि आपने यहाँ पे आके अपने वोट का इस्तेमाल किया, आपने बेशक किसी मुखालिफ पार्टी को दे दे किसी और को दे दे लेकिन जब आपका वोट कट जाएगा आप वोट डालेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये हमारी मुल्क के अंदर दिलचस्पी ले रहा है और इससे जो है आपके हुकूक। अब डेनमार्क के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे 61-62% बंदे जो है वो कहते हैं छोड़ो पर आप पाकिस्तान चलिए और चलो जी छुट्टियां दे चलिए खसमान खाए, तो इस तरह वो जो होता है वो मनफी रवैया अख्तियार किया जाता है। जिनको जो जो पार्टी हमारे खिलाफ है वो इनको कैश करवाती है, वो कहते हैं ये लोग इंटरग्रेट नहीं होंगे, ये लोग तो कहते हैं कि वोट ना डालो, इसमें तरीक को ले आएंगे, दूसरी पार्टियों को ले आएंगे और फिर ये जो जो सब्जेक्ट बन जाता है जैसे शायद ने अभी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ। देखिए 99% मुसलमान ऐसे नहीं, बड़े बड़े आला पोस्टों पे स्वीडन में भी बैठे हैं, वहां पे सिक्योरिटी की सबसे बड़ी जो है वो पाकिस्तानी है, इसी तरीके से डेनमार्क के अंदर ISR से लेके हर जगह पे ऊंची ऊंची पोस्टों पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, मुसलमान बैठे हुए हैं, लेकिन उनका एहतराम जो है हर जगह होता है। تو لہٰذا میں تو اتنی بات کروں گا کہ حاجی صاحب اگر میں آپ کی عزت نہیں کر سکتا تو مجھ سے بڑا راشسٹ کوئی ہے ہی نہیں, مجھے دوسروں پر تنقید کرنے کی ضرورت
1: کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. نعیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, نعیم صاحب آپ کی ہمیں ملا, آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا, اب اچھے لوگ ملے, آپ نے میزبانی کی, وہاں لوگ مختلف نظریات کے تھے, مختلف پارٹی کی سوچ رکھنے والے تھے, لیکن سارے پڑھے لکھے تھے. وہاں تو مجھے کوئی پارٹی سیاست نظر نہیں آئی, وہاں تو سویڈن کی سیاست نظر آئی. اگر اس طرح کے لوگ کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں تو کچھ عناصر ہوتے ہیں, شاید دیکھیں باتیں کی سب تعریف کر رہے ہیں, شاید کی عدنان کی تعریف کر رہے ہیں, حاجی صاحب کی کر رہے ہیں, شاہ صاحب کی کر رہے ہیں, جب ان نظریات کے لوگ موجود ہیں تو پھر ہمارے لوگوں میں کون چیزیں یہ ڈال دیتا ہے
3: برادریاں؟
5: اصل میں یہ جو سویڈن کا محلے وقوع ہے اس میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ پاکستانی ہی پاکستانیوں کے یا فارنر فارنر کے دشمن ہیں, کوئی اور نہیں ہے. جب ہمارا جو ہمارے پلیٹ فارم ہے, جیسے کوئی سوسائٹی ہو گئی, کوئی اور گروپ ہو گیا, کوئی نعت گروپ ہو گیا, کوئی یہ اسلامی گروپ ہو گیا, مناج القرآن ہو گئی, جب ہم اس میں تفرقے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک ہم بلاگ بنا لیتے ہیں, کوئی گرین پگڑیوں والا آ گیا, کوئی اور پاکستانیوں نے کوئی اور اس طرح کی سوسائٹیاں بنا لیں, کوئی ہم سیاست میں آ گئے, مختلف سیاسی پارٹیاں. یہاں پر ہمیں کبھی بھی الیکشن میں آ کے پاکستان کی سیاست کو یہاں پر نہیں لانا چاہیے. جب یہاں پر الیکشن ہو, سب سے ضروری بات سوچنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوئے, ہم سویڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں سویڈن یا ڈنمارک یہاں کی سیاست کے اوپر بات کرنی چاہیے, نہ کہ ہم پاکستان سویڈن کا الیکشن ہو یا ڈنمارک کا الیکشن ہو تو ہم اپنے ملک کی پارٹیوں کو یہاں پر رو رہے ہوں. ہمیں ان کو بالکل, آپ کسی بھی پارٹی سے منسلک ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ان کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا چاہیے, اور جو الیکشن پہ بھی کھڑے ہوں ان کو بھی یہی سمجھنا چاہیے یہ ہمارے پاکستانی بھائی الیکشن کرے ہیں, ان کو ہم نے سپورٹ کرنی ہے. جب ان کو سپورٹ کریں گے تو ہماری پریزنٹیشن ہوگی. اب جو جیسے وہ انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر واقعی ابھی یہ کون صاحب ہمارے بزرگ فرما رہے تھے, وہ بڑے اچھی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر دیکھیں بڑے بڑے عہدوں پہ معلوموں میں پاکستانی لوگ, عربی لوگ فائز ہیں ماشاءاللہ, جن کی تنخواہ 1,00,000 to 2,00,000 crore ہے پر منتھ, تو وہ مطلب وہ کمیون کے جو فنانس کی جو چیف ہے وہ بھی ایک عربی لڑکی ہے. تو مطلب کہ یہاں پر ہیں بہت سارے لوگ ہیں, بڑے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں جو اس میں آئے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہمیں جگہ ملتی ہے, لیکن ضرورت ایک بات اس بات کی ہے کہ ہم لوگ کٹھے رہیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, ہم یہاں کی سیاست کو سمجھیں, اپنے بچوں کو یہاں کی سیاست کے اندر لائیں, اور ہم انٹیگریٹ کی سسٹم میں ہوں, نہ کہ انٹیگریٹ ہوں یہاں پہ سوچ ہماری پاکستان میں مینٹلی طور پر رہیں اور پاکستان کی سیاست کو یہاں پر گھسیٹتے رہیں. آپ سپورٹ کریں, کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں, لیکن یہاں کوئی جو ہے نا سیاست اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پر دیکھیں جتنا بھی ماحول ہے, اب جو نئے لوگ آئے ہیں اس الیکشن میں وہ کافی انٹیگریٹ ہوئے ہیں, ان کو کافی حد تک لوگوں نے بتایا سمجھایا ہے, لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہاں پر اگر ہم سیاست میں نہیں آئیں گے, ہم ووٹ نہیں دیں گے تو یہ مستقبل ہمارے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہوپ اور پوزیٹو رکھنی چاہیے.
1: چلیں شاید آپ بات کریں آخر میں.
0: جی راجہ صاحب, میں اس جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گا. اس میں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں پر میں نے جو دیکھا ہے اسکینڈینیوین جو ملک ہیں ان میں خاص کر دیکھا ہے, میں اس کے اندر چلیں یورپ میں دوسرے ممالک میں انگلینڈ کو بھی شامل کر لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی ادھر سے بھی میرا ہے واسطہ, میرے بھائی ہیں ادھر. تو تین قسم کے ووٹر ہوتے ہیں ادھر. ایک جو پہلا جو 4 جو ہے نا اس سیاست کو فالو کرتا رہتا ہے, پوری جو سیاست چل رہی ہوتی ہے اپنے اس ملک کے اندر پارٹیوں کی. اور دوسرا جو ووٹر ہے وہ جو نمبر 2 جو ووٹر ہوتا ہے وہ بہت کم فالو کرتا ہے, وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے لیکن فالو کرتا ہے, لیکن بہت کم, نہ ہونے کے برابر. تیسرا جو ووٹر ہے نا وہ ہے سب سے خطرناک ادھر, اور وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کنفیوژن کا شکار. اور وہ جب کسی محفل میں بیٹھتا ہے, یہ بھی لوگ بیٹھتے ہیں محفل میں, آپ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, دوسرے فارنرز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, تو اس میں وہ یہی باتیں چھتے جب چلتی ہیں بیک چینل جب بیٹھتے ہیں تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ نوح یعنی کہ میں نے اپنا جو ووٹ ہے یش کے ایک دل سے میں پی اے کیش کو क्या कहते हैं इधर जिमी याकुशन को तो कतई मैं वोट नहीं दूंगा या दूंगी। तो जिस दिन वोट होता है इनका ये है, ये वो वोटर है जिस दिन वोटिंग होती है जिस दिन, तो वो जब घर से निकलने तक कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, जब वो जा रहे होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि वीरू है यस इतने मैं आज अपना जो वोट है वो मैं क्या कहते हैं एक वो कास करूंगी, मेरा ख्याल है पी ए खैसको को शेकिंग स्कूल, यानी कि मैं ये समझती हूँ कि इससे जो है ना हमें कोई नुकसान ना हो जाए, तो हम नुकसान से बचने के लिए हमें वो कहते हैं बचा लेंगे, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ या मैं नहीं समझती या मैं नहीं समझता कि वो ठीक है, लेकिन मैं एक सेफ्टी की बुनियाद पर ना आज जिमी याकुशन को वोट वोट वोट में कास्ट कर देता हूँ। ये नंबर तीसरा वोटर है यहाँ पर जो कंफ्यूजन का शिकार होता है वो कहते हैं आहर तक, और ये भी बड़ा वो एक वो खतरनाक वोटर है। तो मैंने जो बात की इसके हवाले से क्या कहते हैं ये जो है यहाँ पर मीडिया का किरदार, मैं इसको फिर दो टोक कहूंगा, मैंने इस मीडिया के किरदार को खासकर मुसलमानों के ऊपर तनकीद या बराए तनकीद जैसे कहते हैं वो एक इस हद तक चली जाती है, यहाँ पर जो डिबेट होती है डेढ़ दो माह से बंदा हैरान रह जाता है और वो इतनी दिल शिकनी कर देते हैं, यानी कि इस हद तक चले जाते हैं कि वो आप सोच भी नहीं सकते। आपने खुद देखा होगा कि यार ये लोग हैं वो, तो जब फिर मैं पीछे जाके फिर इनकी हिस्ट्री देखता हूँ, 200 साल पुरानी 300 साल पुरानी, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 1000 साल पुरानी, फिर मैं देखता हूँ 300 साल, यार ये तो वो लोग हैं जो ये अभी तक इनके जेन से वो तकबर इनके जेन से वो चीजें नहीं निकली, ये तो गुलाम बना के रखते थे, ये तो ये इनकी देखें जाके इनके इनके मकरूह चेहरे कि ये इतना जुल्म करते थे, ये उधर नहीं इनकी नजर पड़ती कि तुम लोग क्या करते थे, तुम लोग ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और ये बात इनको फिर बावर करानी पड़ती है, फिर ये उसके ऊपर छुपते हैं, फिर पीछे कहते ये बात ना करें, ये एक माजी है इसके ऊपर बात ना करें। मैं कह माजी है आप अभी भी मॉडर्न तरीके से इस तरह लोगों के साथ ऐसे कर रहे हैं, आप क्या करते थे, आप अफ्रीकन मुल्कों से लेके गुलाम कहाँ कहाँ नहीं आप लेके गए, अमेरिका लेके गए हैं, साउथ अमेरिका लेके गए हैं, वहां जाके आप गन्ने की काश से लेके क्या क्या आपने नहीं किया उनसे कराए जुलम, 200 साल तक आप जुलम कराते रहे, मिलियंस आप लेके गए, मिलियंस ही आपने मारे लोग, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप ये बातें कर रहे हैं और अभी भी आपके अंदर इतनी वो कराहत है, इतना गुस्सा है, इतना आप ये इंसानी हकों की जो बात है ना, ये उन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती जिनके दोहरे मियार होते हैं, यही वो लोग हैं जो इंसानी हैं।
1: शायद आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। अजी साहब आप बुजुर्ग आदमी हैं, शाह साहब भी बुजुर्ग हैं, तो मैं चाहूंगा अगर कोई आप आखिर में कोई कमेंट देना चाहे तो हमारे पास 2-3 मिनट हैं। जी शे अपना आजी साहब
3: जी मुझे कह रहे हैं आप
1: जी आजी साहब आपको
3: बस मैं यही कहूंगा जी कि उन्होंने तारीख भी दोहरा दी शाहिद ने, और मैं एक बात करता हूं कि एक आदमी ने डैनिश को मशवरा दिया कि आप ऐसे कर लें, उसने कहा तुम मुझे मशवरा दोगे, हम तो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करके आए, तुम्हारा मशवरा हम माने, ऐसा नहीं हो सकता, हम सीनियर हैं, आप दो नंबर हैं, आपका दर्जा नेशनलिटी मकान डिग्री हाई सब कुछ होने के बावजूद हम आपको कि उन्होंने कहा कि पूरे यूके में मिलियन मिलियन जो हैं मुसलमान रह रहे हैं बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान और दुनिया से, उन्होंने उनको सब कुछ हकूक देने के बावजूद उनको दर्जा दोन का शहरी समझ रखा है, शाहिद के अल्फाज की मैं तशरीह कर रहा हूँ।
1: राज साहब आपका बहुत शुक्रिया। साहब आप अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें, गालिबन अदनान जो है वो सुन रहे हैं, माइक उनका काम नहीं कर रहा।
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और उम्मीद है कि आज अच्छा रिजल्ट आएगा और इंशाल्लाह ताला दो हमारे उम्मीदवार मालवा से कामयाब होंगे। याद रखें कि जब हम किसी महफिल में बैठते हैं तो दूसरे की तरफ देख के कहते हैं कि ये हमारे गांव का कमी था, ये हमारे गांव में इस तरह था, ये फलाना था, तो उससे ये होता है कि जब आप यहाँ पे अरबोंपति भी हो जाए, आपके पास रोल्स रॉयस गाड़ी भी नीचे हो जाए, तो जब आप वोट के लिए खड़े होंगे सियासत में आएंगे तो फिर वो आपकी आपके नीचे से कुर्सी जरूर खींचेगा। हमें यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब समझना चाहिए और हर कलमा गो को अपना भाई समझना चाहिए, वह उसका किरदार कैसा भी हो, اس کے اس کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا, خصوصی طور پہ سیاسیوں کو. شاید نے جیسے ذکر کیا, آپ یاد رکھیں کہ جب میں یہاں کی وینسرا پارٹی میں 1972 میں میں نے جوائن کی تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو فارنر مجھے ملے وہ پولش اور چیک ریپبلک اور چیک سلواکیا کے اور دوسرے کمیونسٹ کنٹری سے آئے ہوئے لوگ تھے. آپ کے سویڈن میں بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ رشین کنٹری سے اور ڈی آر سے اور دوسری ممالک سے وہاں پہ پولش وغیرہ بھی آ کے سیٹل ہوئے ہوئے ہیں. اور اب وہ لگتے تو سویڈن ہے کہ ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو ہے یا فورتھ جنریشن وہاں پہ پیدا ہو چکی ہے. وہ لوگ جو ہیں راشسٹ ہیں, وہ جو اصل سویڈش ہے یا اصل ڈینش ہے وہ آپ سے تھوڑی سی آرگومنٹ تو ضرور کرے گا, لیکن اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کا رویہ جو ہے تھوڑا سا نرم ہے تو وہ انسکول کر کے معافی مانگ کے چلا جائے گا. تو یہ جو سیاست ہے یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں اپنا طرز عمل جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, سچ بولنا چاہیے, کامیابی پھر جو ہے وہ سچائی پہ ہی ہے. آپ سب کا شکریہ جی,
1: کامیابی سے چائے پیے. سب لوگوں کا بہت شکریہ جی, آپ لوگوں نے قیمتی ٹائم دیا, چھٹی کا دن تھا. اور نعیم صاحب اسپیشلی آپ کا رباری آدمی ہے, آپ کا بھی جو ہے وہ آپ کے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کا بھی ٹائم ہم نے لیا, شاید آپ کا بھی ٹائم لیا, اجی صاحب آپ کا ٹائم بھی, شاہ صاحب آپ کا ٹائم بھی. تو پاکستان زندہ باد.
4: زندہ باد,
0: زندہ باد.
6: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: तो अभी मेरे ख्याल दो इवेंट हुए हैं। मैं एक बार खुद, मेरे पास भी कुछ पैसे थे जो लोग दे जाते हैं और वो नाम भी नहीं बताते अपना, वो मैं यूब भाई को गया देने, उनके दफ्तर गया। तो उस वक्त वो पैसे भेज रहे थे, तो मेरे सामने जो एक बार, तो मेरे सामने ही मुकम्मल जो अमाउंट है वो भेजी गई है। तो मैं इसका, तो मैं मतलब खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि खुदा माफ करे, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस कोई गलत बात सोचे भी। और मैं अगर आपके सामने, चूंकि आपने जो मेरा तारुफ कराया, मैं उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, अगर आप मुझे इस गहराई तक जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते हैं कि मैं किसी बेईमान आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। हमें इतना एतमाद है अपनी पूरी टीम पे और अयूब भाई पे, तो हम लोग फ्रेंटिकली काम भी इसलिए उनके साथ करते हैं कि वो बड़ी नीयत से बड़े उसे, और मेरा ख्याल है अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको सराहना भी चाहिए। और मैं तो चूंकि मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, इसलिए मैं अभी
1: नहीं
0: ऑन
1: नहीं
0: एयर ही कह
1: अय्यूब
0: रहा हूँ।
1: साहब, देने वालों में लेने वालों में नहीं।
0: हाँ जी बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे, मैं उनके साथ, मैं तो एक किस्म का उनको बड़ा भाई भी समझता हूँ। कभी कभार मुझे उनसे डांट भी पड़ जाती है, लेकिन ये कि मैं यही समझता हूँ कि जिस जो है मेरे सीनियर हैं, जिस इसमें माशाल्लाह आप भी शामिल हैं, अगर वो किसी बात पे मुझे बताते हैं या सजेस्ट करते
1: चलें
0: हैं तो मैं
1: रिजवान
0: पूरी
1: भाई
0: तरह।
1: आते हैं। जो प्रोग्राम हुआ 17 तारीख को प्रोग्राम हुआ, तो तादाद कितनी थी?
0: करीबन जी थे, मतलब 250 के करीब लोग तो थे,
1: तो फी टिकट कितना था पर पर्सन?
0: बड़ा ही नॉमिनल था। देखें जिसमें 200 करोड़ का टिकट था, जिसमें हमने खाना भी दिया है और कुछ अखराजात जो है वो भी अदा किए हैं जो सेपरेट थे, उनकी अभी फिगर मेरे पास नहीं आई, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें यही रहा है कि फायदा हुआ है, लेकिन ये कि काफी इकोनॉमिकली हमें चलना पड़ता है
1: मोबाइल
0: अपने तरफ से।
1: पेमेंट कितना हुआ है?
0: ये जी अभी फिगर मेरे पास अभी नहीं आए, मेरा अभी उनसे रब्ता नहीं हुआ है इस
1: तो
0: मामले में।
1: कैश पेमेंट जो आपके होते हुए दी गई हो?
0: हाँ जी मेरे होते हुए दी गई थी, हम एक बॉक्स में कलेक्ट कर रहे थे। तो अब ये है कि मुझे, अगर मैं बॉक्स में देख के आपको बता दूं तो बड़ा गलत होगा, उसमें गिनने गिनने पड़ते हैं पैसे, लेकिन ये जो
1: तो
0: सब कुछ
1: चलिए,
0: है
1: हर
0: वो
1: चीज
0: हम।
1: का गैस किया जाता है। अगर मोटे मोटी बात की जाए, 300 गेस्ट थे, लोगों ने जो है वो टेलीफोन मोबाइल पे भी किया, कैश भी दिया, तो राउंड अबाउट
0: अरे
1: कितनी फिगर बन जाती है गैस किया जाए?
0: मेरा ख्याल सबसे पहले तो ये कि 250 के करीब गेस्ट थे, तो उसमें आप हिसाब लगा लें, 200 200 कराउंड के जो टिकट है उसके हिसाब से आप लगा लें कितना बना, 40,000 एक बन गया, और मेरा ख्याल है 50 आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 200 से, तो ये तकरीबन ये कोई 50,000 के करीब ये तो टिकट का मेरा ख्याल है बिके हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि असल फिगर्स जो हैं वो अभी हमें, मीटिंग हमारी नहीं हुई है, मीटिंग होगी तो उसमें पता लगेगा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो अयूब भाई के पास एग्जैक्ट फिगर होंगे तो आप उनसे भी पता कर सकते हैं, उनको भी आप ऑन एयर ले लें, वो आपको पूरा तफसील बताएंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम इसके साथ कनेक्टेड है, तो कोई ऐसा वो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई ऐसा कोई डिस्क्रिपेंसी बीच में आ जाए।
1: तो क्या ये अकाउंट यही है, यहीं बैंक में चले जाते हैं?
0: ये अपना जो है ये आप अयूब भाई से पता करें। मैं एक्चुअली आपसे इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैं फाइनेंस गाय नहीं हूँ, मेरा काम है प्रोग्राम को होस्ट करना, फंड रेजिंग करना, लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि पैसों को मैनेज मैं नहीं करता हूँ। वो हमारे, चूंकि इतने लोगों को मैंने, आपने नाम लिया है, उनमें से एक दो लोग जो हैं वो रिलेटेड हैं अयूब भाई के साथ मिलके जो काम करते हैं, और वो उनके पास पूरे फिगर्स होंगे। मैं अगर कोई फिगर दे दूं तो वो, या कोई ऐसा बयान दे दूं जो कि मुझे नहीं पता, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादती होगी।
1: तो चलें रिजवान भाई, चूंकि स्टेट सेक्रेटरी के पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं इसलिए ज़्यादा सवाल आप पे कर रहा हूँ।
0: अच्छा, हाँ बस इसमें यह है कि स्टेट सेक्रेटरी मेरे अलावा राजा बाबर साहब भी थे, और जाहिर है हमने बहुत से प्रोग्राम इकट्ठे किए हैं।
1: हालांकि वो भी हिसाब किताब के बड़े तगड़े हैं।
0: हाँ जो फिर उनसे तो आप, आई थिंक ही इज द बेस्ट मैन, और अयूब भाई टू आस्क दीज क्वेश्चंस। मैं बड़ा एक फ्रीलांस के तौर पे काम करता हूँ, और सिर्फ शौकत खाना में नहीं, और भी
1: चले
0: प्रोग्राम
1: आते हैं,
0: काम
1: आप करते हैं अक्सर, आप जो हैं वो नाराज भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, फिर ये आपको हायर कर लेते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी, ये एक मैंने, एक दो भाइयों ने और भी ये पूछा है, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। जिस तरह अब मैंने जितना इन लोगों के बारे में तफसील से बताया, इससे आपको पता लगा होगा कि मैं नाराज बिल्कुल इनसे नहीं हूँ, क्योंकि ये हमेशा ही बड़ी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत है कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, मैं साफ कहूंगा। तो पिछली दफा मैंने बताया था कि ये मेरा लास्ट, जब हमजा अब्बासी साहब आए थे मैंने कहा था कि ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद मैं होस्ट नहीं करूंगा, लेकिन इस दफा दोबारा इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम होस्ट करें, मैंने प्रोग्राम होस्ट भी किया, सो आपका काम है। लेकिन असल जो वजह है छोड़ने की वो दो है, अगर आपको थोड़ा टाइम हो तो मैं आपको बहुत तफसील से बताता हूँ कि ये वो जो वजह

0: वजूहात हैं वो क्या है। नंबर एक, मेरा इस वक्त जॉब चेंज हुआ है फरवरी में और मैं अब बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया हूँ। मतलब इतना ट्रेवल है मेरी जॉब में कि समटाइम्स मुझे खुद ये एहसास होता है कि मैं शायद अपने आप को ज्यादा, आई एम पुटिंग मोर एफर्ट्स ऑन माई बॉडी। ये एक मेरा मेन जो है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं अगर प्रोग्राम होस्ट करता हूँ तो बड़े दिल से करता हूँ, मैं बड़ी तैयारी करके उसकी आता हूँ ताकि लोगों को मैं महसूस कर सकूं। लोग जाहिर है अगर जो आ रहा है 200 करोड़ खर्च करके, उसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि उसको अच्छा सुनने के लिए मिले, उसको अच्छा। बीच में इसलिए मैं एक दो लतीफे भी वगैरह सुनाता हूँ, तो वो इसी वजह मैं प्रोग्राम तैयार करके आता हूँ। वो मेरे पास टाइम नहीं है अब बिल्कुल भी। अब जिस दिन मेरा प्रोग्राम था, मैं उस दिन ऑडियंस से डायरेक्ट आया हूँ और बड़ा मतलब ओवर स्पीडिंग करके आया हूँ कि मैंने प्रोग्राम में पहुंचना है, घर आके तैयार होना था, जाना था। ये एक मेरा बहुत बड़ा जो है वो मसला है। अभी आपका जब फोन आया, उससे पहले भी मैं अभी दफ्तर का काम ही कर रहा था घर बैठे हुए। जाहिर है जॉब इज योर ब्रेड एंड बटर, हम कोई फैक्ट्रियां वाली तो हमारी चल नहीं रही है।
1: नहीं
0: एक
1: नहीं
0: वजह
1: मुझे
0: सबसे
1: पता है
0: बड़ी
1: आप
0: है
1: मसरूफ़
0: दोस्तों।
1: होते हैं, मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने आपसे टाइम लिया। ज़ाहिर है जिसके पास टाइम मसरूफ़ होता है, कीमती टाइम है, आपने अपने बच्चों को भी टाइम देना है, लेकिन उसके
0: जी सर,
1: बावजूद आपने टाइम दिया, आपका बहुत मेहरबानी है आपकी।
0: जी सर, नहीं ये तो अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलता है। इंसानों ने क्या देना है, इंसानों की औकात क्या है, मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को अजर दे दूं, या किसी की क्या औकात है। ये अजर मिन जानब अल्लाह मिलता है, या उन लोगों की शायद दुआएं मुझे लगती हैं कि मैं अपना जिंदगी में तरक्की कर रहा हूँ, मैं फ्लोरिश कर रहा हूँ। ये शायद उन बेबस लोगों की दुआएं हैं जो हमारी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, अब एक एक वजह तो मेरी मसरूफियत, बे इंतहा मसरूफियत है। दूसरी वजह जो मेन है वो ये है कि मैं हर दफा अपना प्रोग्राम जो होस्ट करता हूँ उसमें मैं हमेशा ये पैगाम देता हूँ कि अब नए चेहरों की जरूरत है। इसलिए कि हम जब ये कहते हैं कि हमने इस मिशन को लेके चलना है और ये चलता रहेगा। देखिए राजा साहब, आज आप यहाँ मौजूद हैं, आज
1: चले
0: आपको
1: आप
0: खुशी
1: जरा
0: हुई मैं
1: नए
0: भी यहाँ
1: चेहरे
0: मौजूद हूँ।
1: बताएं, क्या ये कंप्यूटर पे बनाएं या किस तरह बनाएं, नए चेहरे लाएं?
0: हाँ जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर। मैं उसी तरफ, सवाल तो आप बड़ा मजेदार करते हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, आज मैं और आप यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला सेहत याबी दे, सेहतमंद रखे। लेकिन आखिर कितने साल, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं 1998 में यहाँ पे आया था तो मेरे जो इन लॉज हैं वो उन सारों ने, मेरे ससुर साहब ने मिलके, वो जो लाहौर क्लब या लाहौर वेलफेयर आप जानते हैं, वो जो क्लब, वो मेरी दास्तान रही है कहीं ना नसाब में ना किताब में। वो जो थी उसके जेरे इंतजाम एक प्रोग्राम किया ईद मिलन पार्टी का। ये बात है 1998 दिसंबर की। ईद मिलन पार्टी का बंदोबस्त किया या मेरे ख्याल मार्च अप्रैल की होगी 99 की, लेकिन बहुत साल हो गए हैं। अब उस वक्त जितने वहां मेहमान बैठे हुए थे, जितने लोग बैठे हुए थे, जाहिर है वो उसी एक एज के थे। अब वो जितने भी हैं उनमें से काफी जो हैं वो तो मौजूद नहीं है हमारे में, लेकिन जो हैं अब वो उन एज उनकी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो अपने घरों तक ही रहते हैं, वो ऐसे इवेंट्स में नहीं आते। तो अगर आप इससे इतना ही साल, अगर 20-25 साल आगे लगाएं, तो क्या हम लोगों में इतनी हिम्मत होगी? अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप ये प्रोग्राम कर रहे होंगे, या आप ये जो सामाजिक काम करते हैं वो कर रहे होंगे, या मैं कर रहा हूंगा? तो देखें, देयर इज ऑलवेज अ चेंज एंड नथिंग इज परमानेंट। मैंने इस बात पे जोर दिया है कि मैं बारिश का पहला कतरा बनता हूँ, मैं स्टेज से नीचे आ जाता हूँ। आप मेरी जगह किसी यंग को ढूंढें, यंग मैं इसलिए यंग कह रहा हूँ जो कि फटाफट, जो एजुकेटेड हो और डेनिश अच्छी बोलता हो, जो कि
1: रिजवान भाई,
0: नए
1: आप
0: यंग
1: यंग
0: लोगों
1: की
0: को
1: बात
0: अट्रैक्ट करते
1: करते हैं तो यंग के हवाले जब सारी तंजीमात हवाले की जाती हैं, जिस तरह ये एम्बेसी के सामने डेमोन्स्ट्रेशन होती है तो देख लिया, यंग जो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं वो कितने लोग इकट्ठे करते हैं। पिछली दफ़ा अयूब साहब ने अपने हाथ में ये काम लिया तो उसकी तादाद भी देख लें। तो इसलिए हर चीज़ को यंग से साथ और उम्र सीधा के साथ नहीं तोलना चाहिए।
0: जी। ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मतलब है कि आज अगर हमें यंगस्टर्स ज्वाइन करते हैं तो वो हमसे सीखेंगे, हम मौजूद हैं, ठीक है, ये ट्रेनिंग होती है बकायदा, और उसके बाद वो इस प्रोग्राम को अकेले हैंडल करेंगे। उसके दो फायदे होंगे, एक तो ये कि हम लोग जो आज यहाँ हैं वो कल नहीं होंगे, लेकिन शौकत खाना में तो चलते रहना है ना, अल्लाह ताला इसको आबाद रखे, कायम रखे। तो ये सफर कैसे चलता रहेगा, हम जब मतलब रिटायर हो जाएंगे तो फिर कौन शौकत खाना को चलाएगा? जब तक कि हमने ही आगे इसको ट्रांजिशन कहते हैं, जब तक हमने इसको आगे ट्रांसफर ना किया नई जनरेशन में। मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश कीजिए।
1: लेकिन मुझे ख़तरा महसूस हो रहा है कि आपने छोड़ दिया, आप जा रहे हैं यंग के हवाले करने के लिए, मेरा आपका आखिरी प्रोग्राम है।
0: मेरा मेरा तो ये कम से कम आखिरी प्रोग्राम था, मैंने बता भी दिया है वहां पे, अयूब भाई को भी बता दिया है कि अब मेरा एक तो दफ्तर का टाइम, एक मेन वजह ये है कि मेरा मसरूफियात बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि मैंने तो पिछले साल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कह दिया था कि अब मेरा ये आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ा। और मैंने इनसे इस बार कहा कि हाँ ठीक है ये है, लेकिन इस दफा आखिरी है, आप किसी नए होस्ट को लेके आए, रिप्लेसमेंट लेके आए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अगर आप समझते हैं कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, मैं जरूर करूंगा, लेकिन ये है कि नाउ
1: तो राजा बाबर जो है उनसे अच्छा तो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा जो है वो शेर व शायरी भी करते हैं।
0: हाँ जी, मेरी राजा बाबर साहब के साथ मैंने
1: वो
0: बहुत
1: भी
0: से
1: यंग
0: प्रोग्राम,
1: है।
0: वो तो बिल्कुल यंग है ना जी, तो इसलिए उनका तो मैंने इसलिए जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो ही आपको बताएंगे कि क्या उनकी फीलिंग है, क्योंकि वो
1: चले
0: भी इस बात
1: अपना रिजवान
0: को।
1: भाई आपसे दिल लगी कर रहे हैं, चूंकि गप शप की शक्ल में ये प्रोग्राम है, मैंने आपसे टाइम लिया है तो उतना टाइम तो मैंने ये आपको पहले बता दिया था, मेरा इतना टाइम आपसे लूंगा। तो आप बताएं जरा आंखों देखा हाल बताएं, क्या हुआ, किस तरह आप दाखिल हुए, किस तरह लोग आए स्टेज सेक्रेटरी पे, क्या स्टेज सेक्रेटरी ने क्या किया, किस तरह वेलकम किया जी, आंखों देखा हाल।
0: इस दफा बहुत मैं बड़ा पॉजिटिव एक वाइब्स मुझे ये आई कि मैं नॉर्मली एज ए होस्ट जल्दी पहुंचता हूँ, लेकिन चूंकि मैं ओडेंसे से आ रहा था तो मुझे थोड़ा डिले हुआ, लेकिन जब मैं पहुंचा हूँ तो तकरीबन आधी से ज्यादा जो कुर्सियां हैं वो भर चुकी थी, लोग आ चुके थे, और आहिस्ता आहिस्ता मतलब समझ लें कि 15 से 20 मिनट में पूरा हॉल जो है उसमें मेरे ख्याल मुश्किल से कोई कुर्सी खाली मिल रही थी, काफी लोग थे, और ज्यादा तादाद जो है वो ख्वातीन की थी, क्योंकि एक खातून जो गेस्ट है वो आ रही थी। तो उसके बाद फिर ये पता लगा कि वो भी तशरीफ ले आई हैं, हमने उनको रिसीव किया, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब को रिसीव किया, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी हमें जो प्रेजेंटेशन दी, और पूरे लोगों के लिए लंबी प्रेजेंटेशन थी, नॉर्मली लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन हर एक बड़े ही उसको गौर से सुन रहा था, और इट वॉज एक्चुअली अ वेरी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, आई वुड अप्रिशिएट, क्योंकि इससे जानकारी हमें ये मिली है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मिशन। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया, काफी लंबी प्रेजेंटेशन थी लेकिन बहुत ही ज्यादा शेर हासिल गुफ्तगू रही, बड़ा उन्होंने बताया। उसके बाद फिर हमने रहीम जो हरीम साहबा को स्टेज पे बुलाया, और फिर बकायदा प्रोग्राम का आगाज हुआ।
1: ये हरीम साहिबा
0: फंडरेजिंग
1: कौन थी?
0: ये एक जनाब टीवी आर्टिस्ट हैं, ड्रामा में काम करती हैं, और कुछ मेरे ख्याल एक दो फिल्मों में भी काम कर रही हैं, उनकी फिल्में भी शायद एक दो आने वाली
1: उन्होंने
0: हैं,
1: कोई
0: लेकिन
1: ड्रामा किया या कोई नगमे सुनाए या क्या किया?
0: नहीं जी बिल्कुल, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से फंड रेजिंग को ही जो है वो हाईलाइट किया और इसकी इम्पोर्टेंस बताई, और जो खवातीन आ रही थी हमारी बहनें जो ऊपर फंड देने के लिए आ रही थी, डोनेशन देने के लिए आ रही थी, वो उससे हर एक से बिल्कुल उसी तरह मिली, जिस तरह एक अगर 1,000 दे रहा है और एक अगर जो है वो 100 क्राउन दे रहा है, वो उसी तरह ही अच्छे तरीके से वो मिली हैं, बहुत मोहब्बत से मिली हैं, और मैं फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कह लें मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, एक तो अब्बासी साहब से और एक इनसे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि जो यंग जनरेशन आ रही है वो पढ़े लिखे घरानों से आ रही है और एजुकेटेड है, और मैं बहुत तमीजदार।
1: रिजवान भाई सबसे ज्यादा किसने दिया, जब उन्होंने मांगे डोनेशन के लिए तो सबसे ज्यादा किसने दिए?
0: सबसे ज्यादा किसने दिए, बड़ा अच्छा सवाल किया है, कुछ लोग अपना नाम नहीं बताते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है चंद लोगों ने 3,000 से 5,000 दिए हैं, लेकिन उनकी तादाद कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिन्होंने कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कह देते हैं जी कि हमारा नाम ना बीच में आए,
1: तो
0: पैसे
1: कुछ
0: छोड़
1: लोग
0: जाते हैं,
1: लिखा भी देते हैं।
0: कुछ लोग लिखा भी देते हैं, अब वो बॉक्स और वो जो लिस्ट है वो जैसे मैंने बताया कि अभी हमारा इस सिलसिले में कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन बॉक्स में इस दफा सारे जो कैश था वो डाला गया है ओपनली ना, ट्रांसपेरेंट बॉक्स था, उसमें पैसे डाले गए हैं ताकि सबको पता लगे कि फंड्स जो है वो इस बॉक्स
1: अक्सर
0: में
1: हुआ
0: जाते हैं।
1: रिजवान भाई लोग लिखा देते हैं देते नहीं है, वो लिस्ट जरा हमें भेज दे ताकि हम पढ़ते रहें, यादानी कराते रहें।
0: इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है वो नाम लेना तो ठीक बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किधर है, लेकिन अल्लाह ताला जजा दे और उनको नेकी की हिदायत करे तो वो भी आके तो अपना फंड दे देंगे, नाम मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा बहुत ही कम होता है, ज्यादातर जो लोग हैं जो वादा करते हैं वो मेरा ख्याल है दे देते हैं पैसे। तो
1: अपना रिजवान भाई ये अच्छी खबर नहीं है कि आप जो है वो जगह छोड़ रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं, नहीं, आप जैसे लोगों को रहना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें जो है ना वहाँ जाकर किसी गमी के प्रोग्राम में तो बंदा नहीं शामिल होता, इंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं।
0: जी आप, ये आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो इस तरह का जो प्रोग्राम है ना, ये इतना लंबा प्रोग्राम नहीं होता, इसके लिए जहां तक मैं शुरू से इस चीज का कायल हूँ कि एक ही होस्ट काफी होता है, तो अब जिस तरह राजा बाबर साहब, जैसे मैंने बताया, उनके साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, तो वो मेरे ख्याल काफी हैं इस पूरे इवेंट के लिए। और अगर हम किसी यंग को ट्रेन करना चाहते हैं, मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं कभी भी ना छोड़ता, मैं इसको, इससे मोहब्बत है मुझे मेरे अपने काम से, जितना भी छोटा मोटा मुझे आता है, लेकिन मुझे
1: तो जिस
0: काम
1: तरह
0: की
1: ये
0: वजह
1: देखे ना,
0: से।
1: ये फंड रेजिंग के लिए मेहमान आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं जो वहाँ के एक सिस्टम से हायर किए जाते हैं, तो इसी तरह आप परमानेंट यहाँ को बंदा भी हायर कर लें।
0: परमानेंट ये है ना जी कि नथिंग इज परमानेंट, तो उसमें जो यंग आएगा ना बंदा, मैं दोबारा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने इस मिशन को लेके चलते रहना है, हमारे बाद भी इसको चलते रहना चाहिए। और देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग दिस कि हमारी जो पूरी टीम है वो एक छोटी टीम को अपने साथ यंगस्टर्स को लेके उनको ट्रेन करना शुरू करें। देखिए बहुत चीजें हैं, सिर्फ होस्टिंग तो एक बहुत इसका छोटा सा हिस्सा है, जो मैनेजमेंट है जो इसमें ज्यादातर इसको, जिसको अयूब भाई अभी चला रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा इस प्रोग्राम में भी, के तो वैसे भी मैं यही कहूंगा कि अब कोई एक नया जो है, जिसको अच्छी यहाँ का कल्चर पता है, डेनिश लैंग्वेज में उसका अबूर है, उसको अयूब भाई के साथ समाबात करना चाहिए, उनके साथ मिलके काम करना चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, किन किन चीजों की तरफ ध्यान देना है, वहां से स्टार कैसे बुलाना है आगे आने वाले। आपको क्या पता है कि शायद आगे आने वाले टाइम में हम पाकिस्तान से कोई स्टार बुलाएं ही ना, 25 साल बाद यहीं का कोई लोकल स्टार आया हो, कोई इंग्लिश स्टार आया हो, और उसके तौर से जो है, जो हमारी अगली जनरेशन है, वो ये प्रोग्राम अरेंज करे। क्योंकि शौकत खान हमको, मैंने अपने बच्चों को ये बताया है और ये कहा है, वो भी हर प्रोग्राम में डोनेट करते हैं, मैंने उनको ये कहा कि बेटा मैं रहूं या ना रहूं, डेफिनेटली एक दिन आएगा जब मैं नहीं हूंगा, लेकिन शौकत खान का ध्यान रखना, और बेटा इसके लिए जो भी है वो काम करते रहना जिस तरह भी हो। एक बात मैं आपको मजीद बताना चाहता हूँ, ये जो फंड रेजिंग है ये हम क्यों करते हैं जबकि ऑनलाइन खुली हुई है, मेरे ख्याल आप भी, आपके जिन भी ये चीज होगी कि
1: बिल्कुल,
0: ऑनलाइन
1: लाइनें
0: ओपन।
1: खुली हुई हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं।
0: जी बिल्कुल, और समवन कैन डायरेक्टली डोनेट टू शौकत खानम पाकिस्तान। तो अपरेंटली लगता तो ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। लेकिन वजह, अब मैं आपको इसकी मेन वजह बताता हूँ कि हम ये प्रोग्राम क्यों अरेंज करते हैं। देखें ये जो ऑनलाइन है इस पे लोग 100 भेज देंगे, 200 भेज देंगे, 500 भेज देंगे, कुछ भी, लेकिन फंड रेजिंग में कलेक्टिवली सारे एक ही तारीख में पैसे जो हैं वो डोनेट करते हैं। और हम लोग जो के स्टेज पे होते हैं, या हमारे जो स्टार आए होते हैं, मेनली उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो अपना लोगों को जब इसकी अफादियत बताएंगे, इंसानी दिमाग इस तरह राजा साहब काम करता है कि एक वक्त में आपका दिमाग एक फैसला करता है और अगले ही वक्त में वो उस फैसले को चेंज करके दूसरा फैसला कर लेता है कुछ खास चीजों में। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताया जा रहा है कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आप इसको इसमें 1,000 दे दें। मैं कहूंगा यार मेरे हालात तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं 1,000 दे देता हूँ। लेकिन राजा साहब जब वो मोमेंट खत्म होता है ना, तो उस वक्त मेरा माइंड भी चेंज हो गया होता है। ये इंसानी बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये आप कहीं भी नेट पे चेक कर लें, इंसानी माइंड काम ही इस तरह करता है। तो फंड रेजिंग के प्रोग्राम में ये होता है कि जब हमारे जो गेस्ट हैं जो, और या जो शौकत खानम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जब आके इसकी अफादियत बताते हैं, वो जब आके इसके फवायद बताते हैं, और ये बताते हैं कि इसकी कितनी जरूरत है, तो वो लोग मेरे जैसे लोग जो कि 100 करोड़ या 200 करोड़ महीने का, या कभी कभार 100, 150, 200 इतना महीने का हम ऑनलाइन भेजते हैं, उनमें उनको भी एक किस्म की एनर्जी मिलती है और वो बढ़ के डोनेट करते हैं। तो इसके ऊपर बकायदा एक, ये खान साहब जब माशाल्लाह नहीं थे, जेल में बाहर थे, तो ये बकायदा इसके ऊपर एक इंटेंसिव एक डिबेट हुई थी, तो उससे ये पता लगा था कि फंड रेजिंग इवेंट्स में लोग ज्यादा इंटेंसिटी से
1: अच्छा,
0: फंड
1: जिस
0: रेजिंग
1: तरह
0: कर।
1: आप देखिए ना, मस्जिद में जाते हैं तो हालांकि चंदा पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए, कपड़ा फैला लेना चाहिए, लेकिन हमेशा जब जूं ही नमाज ख़त्म होती है, ला इलाहा पढ़ते हैं तो साथ ही कपड़ा शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब क्राउड जब मौजूद होता है।
0: इसका देखें, आपने बिल्कुल वही बात कही, आपने माशाल्लाह इसका जवाब दिया मुझे, कि जब आपके मतलब सिंपल उर्दू में जब आपके जज्बात को उभारा जाता है ना जनाब, जब आपको ये बताया जाता है, इसकी हिफाजत बताई जाती है। कुछ लोग, कुछ काम मैं और राजा बाबर भाई मिलके करते थे, मतलब ये कि अब तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये कि हम लोगों के
1: लेकिन बाबर
0: बाबर
1: साहब से जब भी रابطہ कायम किया जाए तो वो कहते हैं मैं ख़त्म पे जा रहा हूँ, बस अभी ख़त्म पे आया हूँ, अभी फातिहा पे आया हूँ, तो अभी मैं शिकार पे जा रहा हूँ, अभी मैं शिकार कर रहा हूँ, अभी मैं जनाब, अभी ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए तो टाइम चाहिए।
0: جی ختم پہ تو ظاہر ہے وہ دعائے خیر کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہ تو نیک آدمی ہیں, تو ظاہر ہے ان کا, میں بھی خود بھی ان کا بہت مداح ہوں. اور جس طرح میں دوبارہ یہ بات کہوں گا آن ایئر کہ میں نے اور راجہ بھائی نے شوکت خان
1: تو کو آپ ذرا میری عرضی آگے بھیج دیجئے گا کہ ایوب صاحب کو اور اپنا راجہ بابر صاحب کو کل اتوار کے پروگرام میں ہم دعوت دیتے ہیں, ابھی ذرا مصروفیات اپنی کینسل کر دیں باقی.
0: اچھا جی میں بالکل, بلکہ آپ کا تو میرے سے زیادہ ان سے بات ہوتی ہے بھائی سے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اور انہوں نے کوئی چار پانچ پروگرام مل کے کیے ہیں اکٹھے, اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ان کے پاس. دیکھیں یہاں پہ ایک قلت یہ بھی ہے کہ اردو کا لوگ کم جانتے ہیں.
1: اپنا رضوان بھائی بڑا مشکل ہے دو شیر سٹیج پر.
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اور وہ ان کو یاد ہوتے ہیں اور مطلب بولتے بھی موقع پہ ہیں, تو یہ بڑی ایک یونیک قسم کی کوالٹی ہے اور مجھے مزہ آیا ان کے ساتھ کام کرتے ہیں.
1: لیکن آپ زبانی بولتے ہیں وہ پڑھ کر بولتے ہیں؟
0: پڑھ کے اس لیے بولتے ہیں کہ کہیں کوئی, کیونکہ اردو زبان ظاہر ہے بڑی گہری ہے, لیکن میں جب میری ان سے ویسے اکثر بات ہوتی ہے تو
1: ہم تو ہزاروں غلطیاں کرتے رہتے اردو میں, کون سی ہماری جو ہم لکھنؤ کے پیدا شدہ ہیں.
0: وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی بہرحال میں تو تعریف کرتا ہوں جو آگے آتے ہیں سٹیج پہ آتے ہیں اور آ کے فنڈ ریزنگ کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا راجہ صاحب کوئی آسان کام نہیں ہے, بے شک کہ آپ کسی
1: دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لیکن آپ بہت آسان ہیں.
0: اچھا جی وہ کیسے؟
1: وہ آپ دیکھیں کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں, کسی جگہ کھڑے ہو, کسی گاڑی میں دیکھیں, لوگ آپ کے شیشوں پر ٹھک ٹھک کرتے ہیں.
0: ہاں جی لیکن وہ فنڈ ریزنگ نہ کر رہے ہوتے, وہ تو اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں.
1: اچھا یہ فنڈ ریزنگ نہیں,
0: کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا, کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا وہ تو اپنے لیے کرتے ہیں نا, کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا وہ بھی ہم جیسے لوگوں کے, جو کہ ہم تو خدا نہ خاصہ ہم تو اپنے اپنا کام کرتے ہیں.
1: لیکن رضوان بھائی یہ ایک نوبل کاز ہے, اس کاز میں حصہ لینا چاہیے, چاہے سامنے دیں, چاہے چھپ کر دیں, چاہے بینک کی شکل میں دیں, چاہے اپنے نام کے لیے دیں, یہ ایک نوبل کاز ہے.
0: بالکل. اور میں اپنی ٹیم کے بارے میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ, جو شاید آپ نہ جانتے ہوں, یہ جو ٹیم ہے پوری جن کا میں نے نام لیا ہے سمیت جو دو ہماری خواتین ورکر ہیں, ہم ویسے بھی اس کا پرچار کرتے رہتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ
1: خواتین ورکر کا نام بھی لیں تاکہ تجسس پیدا ہو خواتین میں.
0: جی خواتین کا نام آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں کے زمانے میں شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ تصویر نہیں دینا چاہتے تو انگوٹھا لگا دیں, بڑی پرانی بات ہے. تو ہم تو جناب اس ٹائم سے ہیں, اس لیے میں خواتین کا نام
1: 2026 میں بھی یہی کچھ ہے.
0: جی تو میری ابھی ان سے اجازت نہیں, یہ نہیں بات کہ میں نے ان سے بات نہیں ہوئی اس بارے میں کہ مجھے آپ کا میسج آیا تو میں نے پروگرام اٹینڈ کیا ہے, تو ورنہ میں ضرور نام لیتا, مجھے اس میں کوئی نہیں تھا. لیکن خواتین کا اسے ظاہر ہے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کا نام لینا ہے کہ نہیں لینا, لیکن یہ کہ وہ بھی ہماری طرح ہی بہت محنت سے کام کر رہی ہیں. آپ وہ بیچ میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, وہ بیچ میں
1: کٹ گئی. آپ نے آج ایک نام نہیں لیا, اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ سوال کر لوں کہ سابقہ سٹی کونسلر لبنا الہی صاحبہ کا آپ نام نہیں لے رہے؟
0: لبنا الہی صاحبہ شاید کسی وجہ سے مصروف ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا یا ہمارے ساتھ وہ آئی نہیں ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ میں تو پروگرام میں بھی, اس پروگرام میں بھی میں بغیر تیاری کے آیا تھا کیونکہ میں اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف, تو اس وجہ سے مجھے یہ محرکات نہیں پتا اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے, وہ بزی ہیں یا کہیں گئی ہوئی ہیں.
1: میری نکال دیا سسٹم سے؟
0: نہیں ایسا, دیکھیں ہر ایک, ایوری ون از ویلکم. میں آپ کو اس کا ثبوت یہ دیتا ہوں کہ آپ کسی ایکس وائی زیڈ کو بھیج دیں رینڈملی اور وہ یہ نہ بتایا کہ مجھے راجہ غفور نے بھیجا ہے, وہ اس کو آپ ایوب بھائی کی طرف بھیج دیں, ہماری طرف بھیج دیں کہ جی میں شوکت خانم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ کو آ کے بتائے گا کہ کس نے اس کو روکا ہے. کسی نے بھی نہیں روکا, ہر بندہ ویلکم ہے. اگر کسی وجہ سے, تو میرے سے لبنا باجی کی بات نہیں ہوئی ہے اس بارے میں, لیکن جو باتیں میں سنتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پورے پروگرام میں میں نے ہارڈلی ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے اور اس میں کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی, کسی کا ذکر نہیں ہے. میں یہ پوری ذمہ داری سے جس میٹنگ کو میں نے اٹینڈ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
1: آپ کو شاید اٹینڈ نہیں کیا, آپ نے ہوسٹ کیا ہے.
0: میں میٹنگز جو ہوئی تھی نا اس سلسلے میں جو ہوئی تھی وہ ایک میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہوسٹنگ میں تو ظاہر ہے میں پورے پروگرام میں موجود تھا, تو اچھا فیڈ بیک بھی مجھے ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ.
1: رضوان بھائی کلوز کرتے ہیں, میں نے آپ سے آدھا گھنٹہ لیا تھا, تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, معذرت. تو رضوان بھائی اس کو سم اپ کریں کہ اس میں کیا حاصل ہوا, کیا آئندہ کرنا چاہیے.
0: ہاں جی میں بالکل دو منٹ لوں گا, وہ یہ ہے کہ سم اپ اس طرح میں اس کو کرتا ہوں کہ یہ جو مشن ہے شوکت خانم کا یہ چلتا رہنا چاہیے, یہ قیامت تک چلتا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ جس نے یہ ہسپتال بنایا ہے اس کو لمبی زندگی دے اور اس کو جو ہے وہ محفوظ رکھے ہر طرح کی آفت سے جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا, اور اللہ تعالیٰ اس ہسپتال کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ شوکت خانہ ان کے لیے کیا ہے. ہم تو صرف بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا, ہم تو لوگوں کے مطلب اس طرح ان کو میسج دیتے ہیں, لیکن جو بیمار ہوا ہے اس کو اس سے پوچھیں. نہ جو بیمار ہوتا ہے نہ وہ, یہ میری بات پورے جو آپ کے سامعین سن رہے ہیں وہ سن لیں, جو بیمار ہوتا ہے اس طرح کا مرض کو لگتا ہے, نہ پھر وہ پی ٹی آئی کا کارکن رہتا ہے نہ وہ مسلم لیگ کا کارکن رہتا ہے, اس کو صرف اور صرف اپنی زندگی بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ شوکت خانم از پرووائڈنگ اٹ, اینڈ آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ دیٹ دس جرنی شوڈ بی این ایور لاسٹنگ جرنی, یہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے ہم رہیں یا نہ رہیں. میں آپ کے توسط سے دوبارہ یہ درخواست کروں گا اپنے ینگ جنریشن سے کہ وہ آ کے ہمیں جوائن کریں, تاکہ جب وہ آ کے اسٹیج کو سنبھالیں گے اور ڈینش اور اردو اور انگلش کے ملے جلے اس کے اندر وہ ہوسٹ کریں گے, تو جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی آنا شروع ہوگی. آج ہم لوگ موجود ہیں, میں دیکھ رہا تھا راجا صاحب پروگرام میں, زیادہ تر تقریباً 90% لوگ وہ تھے جو میری اور آپ کی عمر اور یا ذرا سے چھوٹے ہوں گے, 10 سال 12 سال کا فرق لگا لیں, وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو اردو سمجھ آتی ہے, جو اردو سمجھتے ہیں. لیکن ہاؤ اباؤٹ آر ینگ جنریشن, کیا ان میں سے اتنے ہیں جو کہ اتنی گہری اردو کو یا اتنے جو ہم جس طرح کی ہوسٹنگ میں اپنے شعر و شاعری بولتے ہیں, لطیفے بولتے ہیں, ان کو سمجھ آ سکیں؟ تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, میرا اسٹرانگلی میں یہ کہوں گا, ایوب بھائی بھی ماشاء اللہ شاید پروگرام سن رہے ہوں کہ, اور ان سے میری بات بھی ہوئی ہے سلسلے میں, کہ ایوب بھائی ہم اپنے ساتھ ینگ لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں, بے شک ان کو شروع میں بورنگ لگے, ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ وہ یہ سیکھیں اور وہ اس مشن کو لے کے آگے چلیں. ہمارے پاس زیادہ سال نہیں ہے, یہ جنریشن چینج ہوتی ہے, یہ ٹرانزیشن کا پیریڈ سارا وقت چلتا رہتا ہے. آج آپ بتائیں, قائد اعظم محمد علی جناح موجود ہیں, ڈاکٹر قدیر خان موجود ہیں, یہ مجھے یہ چلتا رہتا ہے, یہ چینج ہوگا. آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے, لیکن شوکت خانم کا مشن نہیں رکنا چاہیے. ینگ جنریشن سے میرا ریکویسٹ ہے, پلیز کم اکراس, جوائن اوور ٹیم, لرن دا تھنگس اینڈ کیپ دس جرنی موو آن.
1: رضوان بھائی آپ کا بہت شکریہ, ہم نے سارے سوال آپ سے کیے, تیکھے سوال بھی کیے, لیکن یہ ایسا نوبل کاز ہے, اس کاز کے لیے سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور لے کر میں حکومت وقت سے بھی جو ہے وہ اپیل کروں گا کہ ڈنمارک میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں جب پیشنٹ جاتا ہے تو فلی 100% علاج جو ہے وہ پیشنٹ کا فری ہوتا ہے. اسی طرح حکومتیں بھی اسی طرح کے اسپتال بنائیں, باقی چیزوں کو لگژری چیزوں کو چھوڑ دیں, اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. صحت ہے تو سب کچھ ہے. رضوان بھائی آپ کا بہت شکریہ, پاکستان زندہ باد.
0: پاکستان زندہ باد, شکریہ سر, السلام علیکم.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہماری مہمان ہیں وہ لبنا الہی صاحبہ ہیں، یہ سابقہ سٹی کونسلر ہیں اور نوجوان سیاستدانوں میں ان کا سب سے پہلے نام آتا ہے، اور اس کے بعد سکندر آیا، وہ بھی نوجوان تھا۔ آج سکندر سے بھی بات ہوگی، لیکن وہ ان کا ٹائم اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے، باقی باتیں بھی کریں گے، ہم خود بھی انالائز کریں گے، ہماری ٹیم بھی انالائز کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ جن جن کے مہمانوں کا ٹائم ہوگا تو ٹائم کی پابندی ہم اگر خود نہیں کریں گے پھر دوسرے کیسے پابندی کرتے ہیں۔ سامع ناظرین، اس وقت لبنا الہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ لبنا، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: سننے والوں کی خدمت میں سلام اور شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔
1: لبنا، چونکہ وقت اس لیے آپ کا بنتا ہے، آپ کا بولنا بنتا ہے کہ آپ بہت پرانی سٹی کونسلر رہیں اور اس کے بعد لوکل جو تنظیمات ہیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، پارٹی کی آپ ممبر ہیں، حکومتی جماعت پارٹی کی آپ ممبر ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کمیون کو دیکھتی ہیں، پارلیمنٹ کو دیکھتی ہیں۔ آئے دن یہ جو نئے نئے قانون نیشنلٹی کے حوالے سے یا دوسرے چیزوں کے حوالے سے، کیٹیگری 5 کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو بحث چل رہی ہے کوپن ہیگن پارلیمنٹ میں یا کمیون میں یا اخبارات میں چل رہی ہے، ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟
2: میں صاحب ان ساری چیزوں کی کو ایسے دیکھ رہی ہوں کہ جس طریقے سے بغیر سوچے سمجھے آگے پیچھے دائیں بائیں ووٹ پھینکے گئے ہیں یا دیے گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے دیے نہیں، یہ جسٹ سمپلی اس کا ریزلٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ جس پارٹی سے میں ہوں ریڈیکل وینسٹا کی، ہم اس چیز کے حامی ہیں کہ بچوں کو بائی برتھ نیشنلٹی ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ ڈنمارک میں ایک قانون ہے کہ جب ووٹ پارٹیوں کو ملتے ہیں تو ان کو الحاق کرنا پڑتا ہے، یہ اس میں آئین میں ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی جو نہیں وہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو انسان نہیں سوچا، جو کہ پارٹی کے پروگرام کا حصہ نہیں ہے یا پارٹی کے مینیفیسٹو کا حصہ نہیں ہے۔ تو میں تو آپ کو پتا ہے جب سے یہ پارلیمنٹ کے الیکشن کا ریزلٹ آیا میں تو اسی دن سے کہہ رہی ہوں کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی، اور اب تو میری واقعہ دعا ہے کہ یہ نہ چلے نا، کیونکہ ایک بندہ اس ملک میں یعنی دا کی فار دا رائٹس از کہ جب بھی کہتے ہیں کہ تم پہلے اپنے فرائض ادا کرو اس کے بعد اپنے حقوق مانگو، تو فرائض نہ ادا کرنے کی تو کوئی تکی نہیں بنتی نا، مطلب ہم اپنی مرضی سے ٹیکس تو نہیں دیتے نا، جیسے میں کہوں میرا دل نہیں ہے وہ تو خود بخود کاٹ لیتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات زیادہ ہی کاٹ لیتے ہیں، پھر 2-3 سال بعد خیال آتا ہے کہ نہیں یہ نہیں یہ تھا۔ تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے انہوں نے ایک طریقہ بنایا، میں اس سے اگری نہیں ہوں، بٹ جب آپ سارے اس پروسیجر سے گزر کے کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر تو کوئی بحث نہیں نا ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ہے کیونکہ بیسیکل دینا ہی نہیں چاہتے۔ تو میں تھوڑی سی پریشان ہوں کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، کیونکہ ایک ہی جملہ آتا ہے کہ سامے اولے نہیں لاؤ، سامے اولے نہیں لاؤ، مجھے بالکل یہ سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی طور پہ یہ چاہتے کیا ہے۔ جیسے جو ایسٹ یورپ کے لوگ ہیں وہ جیلوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں کہ جیلوں میں زیادہ جرائم پیشہ لوگ ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں انوان تھا، اس میں بتاتے نہیں کہ کون سے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو ایک زمانے میں صاف لکھتے تھے فلانا جرم اس کے آگے یا مسلمان یا پاکستانی، تو وتیرہ ہی چینج ہو گیا۔ اور دوسرے جو ہمارے اپنے بچے بچیاں مختلف اداروں میں ہیں، کاش وہ مل بیٹھے ہمارے پاس جج سے لے کے وکیلوں سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے، لیکن وہ نہیں بیٹھتے، وہ پاکستانی تنظیموں سے انتہائی الرجک ہے، وہ اس کو وقت کا ایک ضائع کرنا سمجھتے ہیں، اپنے ٹریڈ یونینز میں کام کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ووٹ کرنے کی بات ڈالیں تو وہ مطلب جن کو آپ نے ووٹ ڈالے ہیں جائیں ان کا گریبان پکڑیں کہ بھائی آپ کی پارٹی نے یہ کی ہے، ان پڑھ تو کوئی بھی نہیں یہاں پہ، لیکن نہیں وہ بس انہی دنوں ایک ماحول اٹھتا ہے کہ جی اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو نہیں دینا، یہ کرنا ہے وہ کرنا، اس کے بعد اللہ تیری یاری ختم۔ بات
1: آپ نے بالکل بجا فرمایا، آپ نے بچپن جوانی جو ہے اس سیاست کی صحرا میں گزاری اور بہت ایکٹیو گزاری صحرا میں، आप इस पार्टी के आप मेंबर हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने खुलकर वाजे सबूत के तौर पर बात की कि हमारी पार्टी का जो मंशूर है बाई बर्थ जो है वो नेशनैलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी हर हकूमत में रही, कौन सी हकूमत में जिसमें ये पार्टी शामिल नहीं होती, और जब ये बात आती है कि ये गैर मुल्कियों को हकूक दिए जाए तो कौन सी मसलतें होती है ये खामोश हो जाते हैं?
2: ये इस तरह नहीं होता कि एक चीज ना, बहुत सारी चीजें वहां देखनी पड़ती हैं, लेकिन इसका एक ही हल है चाहे कोई भी पार्टी हो, कि पार्टी के जो अंदर लोग हैं, पार्टी के जो मेंबर्स हैं, मैं तो अपने तौर पे कर रही हूँ, लेकिन मैं कितना कुछ अकेला करूँ, तो मैंने तो उनसे बकायदा कहा है कि जी ये आपका बजट पेश होने के बाद, ये अक्टूबर में बजट होता है, तो मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, जो लोग इंफोस कार्ड की उसमें कमेटी में बैठे हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी सियासत कैसे, जो अपना प्रोग्राम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब क्या ख्याल है आपका कैसे करेंगे, क्योंकि मैं अपना टाइम देती हूँ, मैं मुतहरक मेंबर हूँ, आई हैव एवरी राइट्स टू आस्क कि भाई तुमने क्या किया, लेकिन उन वोट असि दे के डब्बे च बंद करके मिठी नींद सो जाइए बेरी थले, फिर तो कुछ नहीं ना हो सकता,
1: बेरी थले सो जाए। लुबना देखें कि काशिफ जो है वो कोपेनहेगन कम्यून में है, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ते हैं, बड़े मुतहरक हैं, बड़े धीमे मिजाज से अपना काम करते रहते हैं। जोहर अली हैं, वो भी रेडिकल वंस्टा के हैं, उनका भी असर रसूख है। इसी तरह पुराने हैं नदीम फारूक जो हैं, वो भी इसी पार्टी के हैं, तो और भी बहुत सारे लोग इस पार्टी के हैं, तो ये अपनी पार्टी में आवाज़ क्यों नहीं उठाते, ये सारी जिम्मेदारियाँ आप पर आती हैं?
2: नहीं, मैं तो अपने तौर पे उठाती हूँ, मैं और काशिफ मिलके काम करते हैं, हम दोनों ने जितने खतूत लिखे हैं हमने मिलके लिखे हैं, अगर मीटिंग हमें उन्होंने दी तब भी मैं, मेरे साथ होगा, लेकिन है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक है या दो है या दस है, लेकिन अगर यही आवाज मुख्तलिफ क्या कहते हैं इलाकों से आए, मुख्तलिफ लोग उसका करें, देखे हम किसी भी पार्टी का के मेंबर हों, लेकिन हमारा तर्ज गुफ्तगू, द वे टू एक्सप्लेन, अपनी बात समझाना, अपना मुद्दा पेश करना, ये सारी चीजें इकट्ठी हो तो अल्लाह क्या से क्या हो जाए, क्योंकि इसको कहते हैं प्रेशराइज करना, उनको पता है इन्होंने पूछना ही नहीं मुड़ के, अगली दफा इनको याद आएगा कि हमने कोई अपना बंदा खड़ा करना है, फिर उसको खड़ा करेंगे, फिर उसकी कंपेन करेंगे, तो बस कहानी खत्म, हमने तो कभी इनसे कुछ मांगा ही नहीं।
1: लुबना मैं आपकी बात को लेकर चलता हूँ कि हमारे लोग, हमारे से मुराद है गैर मुल्की डेनिश निसार जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, बाकी तो कम्यून का भी इलेक्शन लड़ते हैं, सिटी काउंसलर भी हैं, पार्लियामेंट के मेम्बरान भी बनते हैं, हमारी गैर मुल्की जो हैं वो निसार जो हैं वो डेनिश हैं बाई बर्थ हैं, अपना उनके वालिद साहब यहाँ आए, वो अब वजीर बन चुकी हैं, तो अगर ये लोग अपनी पार्टी मंशूर पर ही अमल नहीं करते तो इन पार्टियों में जाने का क्या फायदा कि अपने मंशूर पर ही अमल नहीं करते?
2: राजा साहब ऐसा नहीं है कि एक वो डिक्टेट है इमला के पार्टी की मंशूर में ये लिखा है, उनके ऊपर दूसरी तरह का प्रेशर होता है, बजट की सारी कहानी है, एक पेवंदकारी होती है, इधर से पकड़ उधर से जो नहीं है, लेकिन प्रेशर होना चाहिए कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, हम जैसे कहते हैं कि 100% इम्प्लीमेंट करें तो शायद 50% कर दे, लेकिन करें तो सही ना, और ये सारी पार्टियों की, क्योंकि डेनमार्क में एक बड़ी अजीब सी शिक है कि आप उसको वोटों को आपने जाया नहीं करना, आपने यानी हुकूमत बनानी है, इसी तरह बजट में भी है कि आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो लेकिन है कि मैं फिर कहूंगी जो हमेशा से कहते हैं, जाएं अपनी पार्टियों को अपनी पार्टियों के साथ काम करें और उसमें भूल जाएं कि कौन क्या है, ये जो आपस की वो क्या कहते हैं टसल है उसको भूल जाए, सिर्फ जो हमारा इशू है उसको याद रखें, हम तो सारे मतलब बच्चे नहीं है, अपनी अपनी जिंदगी पर अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो कुछ कर जाए ना, बच्चों को क्यों सजा मिलती है कि उनके पेरेंट्स नहीं क्वालिफाई कर सकते, डेनिश नहीं बोल सकते या जराइम पेशा है, भाई बच्चों का इसमें क्या कसूर है जो यहाँ पे पैदा होते हैं, मेरा तो एक ही आर्गुमेंट है कि बच्चे जो नहीं वो यहाँ पे पैदा होते हैं, यहाँ के अस्पतालों में पैदा होते हैं, बेशक उनके पेरेंट्स या वालदैन डेनिश नेशनलिटी के नहीं क्वालिफाई कर सकते।
1: आप उर्दू बहुत अच्छा बोलती हैं, पता नहीं चलता कि आप पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, पश्तो स्पीकिंग है, इसी तरह सिकंदर उर्दू बहुत अच्छा बोलता है, और भी लोग उर्दू अच्छी बोलते होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है, लुबना आप जिस तरह आजादी से बोलती हैं, आप भी तो पार्टी की मेंबर है, आपको क्यों नहीं डर लगता, आप सब जगह अपना आवाज उठाती रहती हैं, यही जमहूरी हक है जो आप अपना हक इस्तेमाल करती हैं, तो ये कैटेगरी 5 वाला मामला है, किसी जगह पे भी गैर मुल्की जो है आपकी याद में होगा कि कभी गैर मुल्की अपने मफाद के लिए बाहर डेमोन्स्ट्रेशन करके निकले अपना हक मांगने के लिए?
2: राय साहब ये सारे पार्टी के अंदर, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो नाराजगी हो जाएगी कि जी आपने घर के कपड़े गंदे बार धोए हैं, पार्टी की कमेटियों में बैठे, पार्टी के हलके में काम करें, तजावीज हलके के जरिए भिजवाए जाए अपने हलके की, जो आपकी मीटिंग महीने 2-3 महीने बाद होती है उसमें अपना मुद्दा रखें, वहां से पास करवा के आगे लेके जाए, ताकि उनको पता हो कि ये अकेली बंदा या बंदी नहीं है, ये सिर्फ पार्टी के जरिए ही हो सकता है। और जहां तक डरने की बात है, जब मुझे ऑलमोस्ट 9,000 के करीब पर्सनली वोट मिले थे और मैं बड़ी खुशी से अपनी उस मीटिंग रूम में गई थी, वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस था, सांस लेगी लोगों के सांस की आवाज आ रही थी, मुझे किसी ने भी नहीं उठ के कहा मुबारक हो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मुझे वहां समझ आ गई थी कि मैंने क्या करना है, क्योंकि वो तो मेरे से कुछ नहीं छीन सके ना, मैं मतलब मेरे मैंने उनसे उस वक्त था, क्या था, कोपनहेगन को उन्होंने यूरोप का सकाफती शहर मेंशन किया था, ये चुना था उसके लिए, तो मैंने ये कहा था कि मुझे ये मेरे पास इतने वोट है, आई वांट टू बी अ मेयर। उस पे जी हम इतनी कि हम जो मेयर बैठा होता है उसको नहीं उतारते, हम ये नहीं करते, तो उन्होंने 253 वाले बंदे को जो नहीं वो मेयर बना दिया था, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
1: इसका
2: तो
1: मतलब
2: मुझे
1: है
2: वक्त
1: वोटों की रिस्पेक्ट नहीं की गई।
2: नहीं, वो क्योंकि मेरे वोट से 2 लोग और बने थे, तो वो उसका तो कोई जिक्र नहीं ना, लेकिन है कि उस चीज ने ना मुझे फुलाद का बना दिया, जो मेरे साथ हुआ था ना उसमें। उसके बाद फिर हमारे कुछ पाकिस्तानी भी थे उस वक्त, बड़े मुतरक थे, वो वहां के जाके SF से मीटिंग उन्होंने की है, माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें इसी मिशन के लिए भेजा था। इस दुनिया में हर इंसान का अपना मिशन होता है ना, उन्होंने जाके बताया कि जी हम पाकिस्तानी इसके इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। फिर जो है, क्योंकि ये कहना गलत है कि मुझे, मैं हर किस्म के लोगों से मिलती थी,
1: नहीं,
2: मैं
1: आपको तो
2: लेटर
1: वोट्स मिले थे ना, चाहे पाकिस्तानी थे चाहे डेनिश थे,
2: लेकिन
1: जिन्होंने भी
2: नहीं,
1: दिए
2: मैंने मैंने
1: वोट्स, तो बाकी किसी
2: देखे
1: को क्या हक पहुंचता? आपको तो जिन्होंने वोट दिए वो तो सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए
2: देखे
1: आपको वोट
2: मुझे
1: दिए।
2: मुझे डेनिश, अरबी, इवन सिगोइना ने मुझे वोट दिए, मतलब ये नहीं कोई कौम कह सकती कि वो की है। मैं आज भी नैरोब्रो में जाऊं, मेरा पहला हल्का था, आज भी मैं जाती हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं इलेक्शन लड़ने का, लेकिन मैं बड़े जाती हूँ उन दुकानों पे, उनसे बातचीत करती हूँ, उनको कुछ छोटा मोटा काम होता है कर देती हूँ। तो लेकिन वो जो जिस तरीके ने इन्होंने मुझे, मेरे दिमाग को, मुझे नहीं फिजिकली, मेरे दिमाग को एक एक जिस तरह आइसोलेशन में, हिफ्ज़े बिजा में नहीं रखते कि इससे बात नहीं करनी, इससे ये नहीं करना, इससे वो नहीं करना, उस चीज ने मुझे फौलाद का बना दिया। मैं सिर्फ अपने काम का सोचती हूँ, आई डोंट केयर वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ अपने अमल की जिम्मेदार हूँ। और ऐसे मुसलमान हमारे मुनकर नकीर बैठे हुए हैं दोनों कंधों पे, तो हमें यही करना चाहिए। तो मैं इस चीज की परवाह नहीं करती कि पार्टी से निकाल देंगे या नहीं कर देंगे। और हमेशा याद करें, याद रखें कि जिस चीज से आप डरते हैं, जिस कोई भी जिस चीज से आप डरते हैं, आपके दुश्मन को पता चल जाता है और वो उसको यूज करता है। मैं तो नहीं डरती ना, उस वक्त के बाद मैं कभी भी नहीं डरी, कभी भी नहीं। उस वक्त मैं भी इलेक्शन के दिन थे, लेकिन मेरे SF से लेकर सोशल डेमोक्रेट में जब भी बयान आते थे, तो मैं मतलब पूरे, जिसको पंजाबी में कहते हैं तड़ले से, वो बोलती थी। मुझे कुदरती तौर पे मेरे वालिद साहब ने मुझे बनाया इस किस्म का, मेरी तरबियत इस किस्म की हुई है कि आप किसी से बदतमीजी ना करें, लेकिन अपने अपना मुद्दा जरूर बयान करें, क्योंकि आप अपना मुद्दा बयान करते हैं, मैं अपना करती हूँ, उससे तीसरी खूबसूरत चीज निकलेगी। ये कोई बात नहीं कि आप हर वक्त ये कि मैं आपको बताऊं, तो शरारतन मैं कभी कह देती हूँ किसी महफिल में ना, कोई शख्स बार बार के मैं आपको बताऊं, तो बड़े शरारतन मैं कह देती हूँ, भाई मैंने तो नहीं आपसे पूछा, आप क्यों बताएंगे, जब पूछूंगी तो बता देना। हम ठोसते हैं अपनी क्या उसको राय एक दूसरे पे ना, ये गलत बात है।
1: लुबना, ये
2: आप
1: कितने
2: अच्छे,
1: दिनों की हुकूमत बाकी है?
2: मुझे देखें, अब बजट होना है, अब देखें क्या होता है। पहली तो इनकी लड़ाई हो गई है ना, तो अगर इसी तरह अपनी अपनी, जैसे SF के जो लोग हैं, जो इनिस लिस्ट के लोग हैं, वो अपने अपनी पार्टियों को जरा हैंड्स अप करें ना, कि ये इलेक्शन के दिनों में, सॉरी ये जो डेंस स्टेट्स वो डेनिश नेशनैलिटी की बात है, तो ये तो इनका पहला बजट है ना, मेरा ख्याल है अगला बजट तक निकाल लें तो बड़ी बात है, मेरी तो
1: तो
2: उम्मीद
1: क्या
2: है उससे
1: असम्प्ति
2: पहले
1: है
2: भी
1: कि
2: उसी से।
1: सोशल डेमोक्रेट में भी इस तरह की जो ग्रुपबंदी होगी है, इस पर भी इख्तलाफात हैं वज़ीर आज़म के साथ?
2: बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक पुराना ग्रुप है जो, जिसमें पॉल न्यूगोप, यूटे हिल्डन, मुझे तो आप याद भी नहीं कि क्या नाम था उसका, बियर
1: मॉन्यूबिटर,
2: रिवाइस, मोनसलू के साफ वो मौजूद है, वो मौजूद है, लेकिन उनकी अकलियत है, इतने ज्यादा वो लोग नहीं है, बट दे आर देयर। और वो बिल्कुल मेटर फर्गसन को नहीं पसंद करते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, जो भी नया आता है वो अपनी कुर्सी के लिए सारे बंदों के
1: तो
2: पास
1: पार्टी
2: एक
1: फॉर मैन बहुत तगड़ा होता है, बहुत पावर होती है उसके पास।
2: लेकिन ये लोगों को अपने साथ मिला लेती है। इसके इसके जैसे इसको अभी पिछले दिनों एक स्कैंडल था कि इसने अपने भाई को की जॉब लेके दी है, इसने फलाने को लेके जॉब दी है, इसके इतने स्कैंडल है आज तक। यानी डेनमार्क में जो असूल है, जो तरीकाकार है, कि जब किसी का क्या कहते हैं, एक वो था तामल केस था, कंसर्वेटिव का एक था, मुझे अब इस वक्त उसमें नाम नहीं आ रहा, उसने खड़े खड़े
1: पॉल
2: इस्तीफा दे
1: श्लूटा
2: दिया
1: जिस
2: था,
1: पर रिजाइन देकर
2: पॉल
1: गए
2: श्लूटा,
1: थे।
2: यस यस पॉल श्लूटा, ये पहला आ, आ, जो है सोशल डेमोक्रेट का चेयरमैन है जिसके स्कैंडल जो भी आते हैं इसका हाजमा इतना स्ट्रांग है, उसको निगल जाती है, कुछ कुछ भी नहीं होता। ये जब गई थी कोरोना के दौरान इसराइल में मीटिंग करने, किसी को नहीं पता था, फिर इसने वो जो मिंक्स होते हैं उसका फॉर्म दिलवा दिया, फिर पता नहीं क्या क्या, यानी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये
1: लुबना
2: पाकिस्तान तो
1: चलें,
2: नहीं
1: सियासी तौर पर देखा जाए तो अगर सियासी पार्टी, आपने तो पार्टी के मंशूर का कह दिया कि आपकी पार्टी के मंशूर में लिखा हुआ है, क्या बाकियों की पार्टी के मंशूर में भी लिखा हुआ है? ये अपने मंशूर पर अमल नहीं करते ये सारी सियासी जमातें।
2: देखे, पार्टी का मंशूर एक आपकी गाइडलाइन होती है। असल कुव्वत जो है पार्टी के, जो छोटे छोटे हलके होते हैं, वो अपनी तजावीज जो इनकी सालाना मीटिंग होती है वहां पे पेश करते हैं, और फिर जो वहां पे मंजूर होता है या मैनोफेस्टो से निकाला जाता है या डाला जाता है। तो मैं इसलिए नहीं कि मैं बजी दूं कि नहीं यही करो यही करो, यही एक रास्ता है अपनी बातें इंप्लीमेंट करवाने की, अपनी बातें मनवाने की। आप बाहर गोल्स प्लेस पे खड़े हो जाएं कोई फर्क नहीं, आप अपने जो साथी हैं उनसे लड़े, लेकिन एक जो पार्टी के अंदर जमहूरी तरीके है कि पार्टी के हल्के के जरिए आपने अपनी बात मनवानी है। एक वक्त था कि यहाँ पे खातून थी से कोस्टर थी, रेडिकल वेस्टा की, तो वो रेडिकल वेस्टा की इंटरनेशनल कमेटी में काम करती थी, वो और कुछ दूसरे लोग जाके हमने मंजूर करवाया था जिसको हुबिस्टल से कहते हैं, कि कश्मीर के बारे में जो रेजोल्यूशन पेश हुआ था वो उस खातून ने करवाया था अपनी इंटरनेशनल उजवेल में। पहले हमने काम किया, हम 8-10 लोग थे, फिर उसने फर्दर आगे पेश किया कि ये होना चाहिए। और डेनिश सियासत में रेडिकल वेस्ट वाइट पार्टी है जिसने बराबरी की सतह पे होते हुए कश्मीर को एक जो है एक क्या कहते हैं मकाम दिया है, और बकायदा उसके बारे में वोटिंग होके एक रेजोल्यूशन पास हुई थी कि यूएनओ या उनको इनका जो हिफाजती सलामती कौंसिल है उसके एजेंडे में इस चीज को शामिल करें कि लोग अपना वोटिंग के जरिए जो क्या कहते हैं उसको हके खुद इरादी करें और वोट डालें।
1: हके खुद अरादियत,
2: हाँ, खुद इरादियत, बहुत कम लफ्ज इस्तेमाल होता है ना तो कभी भूल जाता है आदमी। तो लेकिन है कि ये
1: लुबना
2: दरवाजे
1: चले ये
2: खुले।
1: सारी बातें चलती रहेंगी, आपने कहीं जाना था तो मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया। लुबना एंड गेम क्या होगी? सियासी बात मैं कर रहा हूँ कि सारी जमातों में गैर मुल्की बैठे हुए मौजूद हैं, जिस तरह हम कैटेगरी 5 की बात करते हैं, कैटेगरी 5 पर कोई अमल दरामद नहीं होता। हमारे डेनमार्क के पाकिस्तान के तालुकात भी बहुत अच्छे हैं और दिन ब दिन आपस में जो ज्यादा मोहब्बतें कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये मामला कैटेगरी 5 वाला वहीं तक है। आप रेडिकेल में मौजूद हैं, दूसरे लोग भी मौजूद हैं, सोशल डेमोक्रेट में भी लोग मौजूद हैं और इन लिस्टन में भी लोग मौजूद हैं, और जो बड़े बड़े दावे किए गए, चूंकि आपका कोपेनहेगन कमून का भी बहुत तजुर्बा है, बड़े बड़े दावे किए गए, दांतों का इलाज, आंखों का इलाज, अस्पतालों का इलाज। लुबना एक सवाल है बॉटम लाइन, आपकी अगर ना करे किसी की अला करे टांग ना टूटे, उसकी टांग टूट जाए, उसको एम्बुलेंस आती है, ले जाती है, अस्पताल जाती है, 100% फ्री इलाज होता है, लेकिन अगर आपका दांत टूट जाए तो वो फ्री इलाज नहीं होता।
2: ये एक अजीब सी चीज है डेनिश सिस्टम में, लेकिन अब पता नहीं, एक तो वो सुना है कि जो एक मखसूस एज से ऊपर लोग होंगे उनके पहले इलाज होंगे, फिर पता नहीं किसका होगा। इसी तरह वो जो था बस के टिकट्स का, कि ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, आप कहीं भी नौजवान जाए वो भी कुछ नजर नहीं आता। तो ये बस मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कुछ चीजें डेनमार्क में भी आ गई हैं इलेक्शन के
1: लुबना जो
2: दिनों में
1: लोग पार्लियामेंट में या कम्यून में बोलते हैं उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ बातें करते हैं, तो फिर इस तरह तो मसाइल कभी हल नहीं होंगे। लोग जो बोलते हैं वो नुकसान भी सियासी उठाते हैं, जो नहीं बोलते वो बंद कमरों में फायदे भी लेते हैं। बंद कमरों की पॉलिसी भी बहुत अच्छी होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी होनी चाहिए।
2: नहीं मतलब मैंने तो जब भी अपने लोगों की बात की है मुझे नुकसान ही हुआ है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि जब आप ये फैसला करते हैं कि जी मैंने इंसानों के लिए कुछ करना है या अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो आपको गंदगी से गुजर के जाना पड़ता है। अपने जेन को ये तैयार रखना चाहिए, चाहे आपके मतलब मेरे से ज्यादा क्या नासर कादर ने भी कभी वोट नहीं लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गई थी कि इन्होंने मुझे यूज किया है एक मतलब काली औरत के तौर पे, मेरी वजह से इनको वोट मिले हैं, तो वो इन्होंने आगे आगे मुझे किया, मैंने बोलना शुरू कर दिया, फिर इनको तो पीड़ होगी कि ओ ये तो जाहिर है मैं यहाँ के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, तो अंगूठा छाप तो नहीं थी ना। तो ये है कि बस अपनी पार्टियों में काम करें, मैं फिर वही कहूंगी अपनी पार्टियों में काम करें, जो आपका मौकफ है वो पार्टी का मौकफ बनाए। आपको कोई वो जिसको डेनिश में नहीं कहते दाइंग खेम हुआ, कोई नहीं आपको तसल्ली देगा, कोई नहीं कुछ होगा, लेकिन जब एक चीज पार्टी के अंदर जमहूरियत के तकाजों को पूरा करते हुए कोई चीज पास हो गई, उनकी कोई चाहत नहीं रहती ना, लेकिन बाहर हम कितना भी करते रहे तो वो कभी कहेंगे तुम सूलो हो, तुम अकेला काम करते हो, पार्टी तुम्हारी वजह से बिखरती है, बड़े बड़े मेरे जैसे लोगों के नाम
1: लुबना है। देखे ना, मैं आप ही की बात लेकर चलता हूँ, आपको भी वोट मिले, पावर मिली। मैं येना येलवे जो है वो एक पावर खातून जिसे कहते हैं आयरन लेडी, इसी तरह मार्गरेटे वेस्टा इनके पास पावर आई, आप रेडिकेल के जो फोरमैन है इनके पास पावर आई। तो जब जब पावर आई तो इन्होंने अपने बैग में वोट डाले, तसलियाँ दी, पपियाँ दी, टॉफी दी, इश्तहारात दिए, अच्छी जगहों पे बैठाया, तालियां बजवाई। जब वक्त आया काम करने का तो फिर जिस तरह आपको मिलना चाहिए था, मेयरशिप की सीट मिलनी चाहिए थी आपको, आगे पीछे करके किसी और केसे में चली गई। इसी तरह ये भी हमसे वादे करते हैं, वक्त आता है तो फिर हमें भी इसी तरह जिगजैग कर जाते हैं। तो कभी हमने भी जिगजैग किया?
2: राय साहब मैं फिर वहीं से कहूंगी कि हमारे डेनिश सियासत में मुलव्वस होने का तरीका कार ही गलत है, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौन है, तुर्की कौन है, अरबी कौन है, हम इनकी नजर में सबसे पहले पाकी है या इनवान खान है, दे डोंट केयर कि हम किस जगह से है ना, हमारी रंगत काउंट करती है कि हमारे काले बाल हैं या ब्राउन चेहरा है। तो हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे क्रॉस द पार्टीज, देखिए कितने कौंसलर हैं लेकिन कोई भी नहीं, आप इकट्ठा करके बता दें तो मैं मान जाऊंगा। मैंने कई दफा तुर्कियों से वो किया, नहीं इस तरह नहीं इस तरह नहीं, तो पहले आप ये फैसला करें आप करना क्या चाहते हैं। मेरा एक स्लोगन होता था कि मैं पहले गैर मुल्की हूँ, उसके बाद मैं किसी पार्टी से की मतलब मेरी जो क्या कहते हैं उसकी मेरी वस्ती के अलावा भी जो क्या कहते हैं मतलब आई एम लॉयल जो नहीं है मैं वफादार कि मैं
1: पार्टी सोल्जर
2: नहीं मैं आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी सोल्जर कि मेरी वफा सबसे पहले इनवानता से है, उसके बाद मैं सोशल डेमोक्रेट की हूँ या एसएफ व्हाटएवर जो। तो मैंने तो कभी नहीं छुपाया क्योंकि उस रात मुझे समझ आ गई थी कि मेरी औकात क्या है। उसके बाद पाकिस्तानी तंजीमों के कुछ लोग थे, उन्होंने मीटिंगें की, बताया उन्होंने कि हमने तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं की, मेरी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उनको
1: तंजीमों के लोगों को क्या तकलीफ थी
2: पता नहीं,
1: क्या वो भी उम्मीदवार थे आपकी सीट के?
2: नहीं नहीं वो बस वैसे ही वो पंजाबी कहते ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। मैंने कब कहा है कि मेरे सारे वोट पाकिस्तानियों के, अव्वल तो हो ही नहीं सकते थे, हम 40 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही अफसोस है कि अभी भी हर साल जब होता है इलेक्शन कमून का होता है, मैं सबको कहती हूँ मिल के बैठो, जहां से हमने सीखा जरूरी नहीं तुम वही धक्के लो, ये जो है बजट की गेम क्या है। मेरा ख्याल है कंदर सदीक वाहिद होगा जिसको पता होगा, क्योंकि वो एक अपनी नौजवानी में भी काउंसलर रहा है, फिर उसने पार्लियामेंट में भी किया है और अभी जो नहीं है स्टिल काउंसलर है। तो बाकी तो किसी को नहीं पता कि ये गेम क्या है, वो एक दो साल बाद उनको समझ आएगी, लेकिन एक टर्नोल 4 साल का होता है, 2 साल तो चलेंगे ना। अब 4 साल के अंदर जब नवंबर में इलेक्शन होते हैं, हर साल अक्टूबर में बजट पास होता है, ठीक है, यानी जो लोग पिछले साल नवंबर में चुनाव जीते हैं उन्होंने किसी और का मंजूर शुदा बजट पे 1 साल काम, जिन्होंने बजट उनको दिया उनकी अपनी तरजीहात थी कि उन्होंने किस चीज को प्रायोरिटी दी है, सड़कें बनानी है, स्कूल नया बनाना है। अब कोपेनहेगन कमून में ये जो है कि एक बूढ़ा शख्स मेरा ख्याल है 125 ग्राम गोश्त उसको हफ्ते का मिलेगा, तो मेरे दिल को तो बहुत बुरा लगा, मैंने उठा के जो है आगे पीछे खत लिखे हैं कि जी ये तो एक बूढ़े इंसान को प्रोटीन चाहिए। हाँ मैंने ये जरूर कहा कि जब ये बीमार होंगे तो काइंडली देखो कि एक अस्पताल का बेड क्या कॉस्ट करता है। तो तुम उनको ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों मार रहे हो, क्यों इतना कम की खुराक तुम्हारा मतलब है, खुद तुम इतने इतने बड़े बीफ खाते हो। तो वो उन्होंने तो अपने हिस्से का काम किया है ना, उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाई है, उन्होंने अपना टैक्स दिए हैं, अपनी पेंशनें जमा की हैं। ये एटीपी को ले लें, एटीपी एक जगह टैक्स है, लोग क्यों दें एटीपी? लेकिन वो मुल्क के पास इतने पैसे हैं एटीपी के कि आपकी सोच है, वो जब जब लोग बूढ़े होते हैं तो पता नहीं मे बी किसी को 100 तो किसी को 300, लेकिन टैक्स की शरह इतनी ज्यादा है कि आपको अब क्यों एटीपी ले रहे हैं। तो ये
1: लुबना,
2: पूरा
1: आपका
2: एक
1: बहुत शुक्रिया। लुबना, आपने ये भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि सिकंदर स्टिल अभी तक कम्यून का मेंबर है। तो लोग तो खुशी भी से भी एक दूसरे को मुबारकें भी दे रहे हैं। लेकिन चलें, आपने चूंकि आप रही हैं, सिस्टम को समझती हैं कि स्टिल वो सिटी काउंसिलर हैं। लुबना, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
2: चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।
1: सामाई नाजरीन, ये थी सबका सिटी काउंसिल लुबना इलाही साहबा, जो कि मुतरक हैं रेडिकल वेंस्टा की, जो हैं वो मुतरक मेंबर हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के मंशूर में है कि बाई बर्थ जो है वो शरीयत दी जाए। अब लोगों को बोलना चाहिए, पार्टी मेंबरान को बोलना चाहिए, इस पार्टी में जो शामिल है उनको बोलना चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि हमारे मंशूर में ये बात शामिल है, आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह कैटेगरी 5 की आवाज़ उठानी चाहिए। अक्सर हमारी बात चलती रहती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती रहती है। वो चूंकि उसबी सुरसा अपनी कमेटी के मेंबर भी हैं, उनकी हमारे वजीर खारजा से अक्सर मुलाकात रहती है, पिछले दिनों भी उनकी मुलाकात हुई। बहुत जल्द जो है जोहर अली भी हमारे मेहमान होंगे, दूसरे लोग भी होंगे।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: उन्हें बार्किंग करने दो। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जिस थाली में कोई खाता है उसी में छेद भी करता है। नंबर दो के सिकंदर ने कहा कि मेरे खिलाफ एक बाकायदा लॉबी ने मुखालफत की, तो मेरी दुआ है कि सिकंदर की तरह अशम आगा नदीम भी उस लॉबी का मुकाबला करे। और हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको ग्रीन पार्टी के लिए। मैं दुआगो हूं, मैंने जब क्रॉस लगाया ना ग्रीन पार्टी को, तो मैंने पर्दे के पीछे तस्वीर खींची थी अपने क्रॉस की, और सिकंदर मलक को मैंने भेजी, फोटो भेजी, और 2 सेकंड के बाद सिकंदर बैठा पूछ ले, 2 सेकंड के बाद सिकंदर ने अपने देख कर के मेरी वहां पे पोस्ट पहुंची है सिकंदर के मोबाइल पर, उन्होंने मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया।
1: बिल्कुल सही है,
0: सिकंदर के साथ मैं खड़ा हूँ, और हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपनी भी एक लॉबी बनानी पड़ेगी। ये सीटें वीटें क्या है, सिकंदर क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि सिकंदर की निगाह बहुत दूर तक है, वो मुस्तकबिल पर है। वो चाहता है कि अगर इस दुनिया में मैं आया हूं तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर जाऊं जिसे अशम की तरह नौजवान संभाल कर रखें। कौन है जो नहीं बिकता? कोई आदमी नहीं रहा अनमोल, मेरे लफ्ज सुन लो, कोई आदमी नहीं रहा अनमोल, हर आदमी की एक कीमत है। जवाब खत्म, मेरा सवाल खत्म।
2: ये आने वाला टाइम हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप देख रहे हैं।
3: बहुत शुक्रिया अशम आपका, बहुत शुक्रिया सिकंदर आपका, बहुत शुक्रिया आगा साहब, बहुत शुक्रिया हाजी असलम मेहर साहब, आप सारों का शुक्रिया। इंशाल्लाह रब्ता रहेगा,
0: इंशाल्लाह।
3: समय नाज़रीन, ये थे हमारा जो गपशप की शक्ल में प्रोग्राम था, चूंकि ये बर्निंग न्यूज़ थी, सब पर इसकी नज़र थी, सब बातें कर रहे थे, हमें भी पता चल रहा था, सिकंदर को भी पता चल रहा था, अशम को भी पता चल रहा था, आगा साहब को भी पता चल रहा था। हर आदमी अपने अंदाज से सारी चीज़ों को देखता है, लेकिन नतीजा आपने देख लिया कि ये एक प्लेटफॉर्म पर थे, एक हैं और एक रहेंगे। ये मेरा ख्याल है अब जो है वो सीना गजट करने वाली बातें लोगों को छोड़ देनी चाहिए, उनको हकीकत नज़र आ गई है तो हकीकत के फैसले को मानना चाहिए, इनकी जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए, इनकी सोच की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जमहूरी तरीके से ये आगे बढ़ते हैं, अपना कदम उठाते हैं, इनकी रहनुमाई करनी चाहिए, ना कि लुमड़ी वाला किरदार अदा करना चाहिए। सामिन अकराम हमारे साथ साथ रहिएगा।
4: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: उस वक्त की।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बसमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मज़ुसमाइन एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मज़ुसमाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मज़ुसमाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मज़ुसमाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पर मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किए हैं। लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है। यूल एंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वज़ीर आज़म साहब ने की, एक और ज़्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। माज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियाँ इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे, डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फोल्क पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندرہ لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائند آباد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।